0: मीडियम वेव 1500
1: बजट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रश्नपत्र लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
3: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
2: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री वांगचुक को रचनात्मक संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को लेकर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
4: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है।
2: श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है, लोकसभा की कार्यवाही जारी है। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया।

घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 719 अंक गिरकर

0: करने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को लेकर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
1: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है।
0: श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है। लोकसभा की कार्यवाही जारी है। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 75,672, जबकि निफ्टी 196 अंक गिरकर 23,673 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Valsa Williams.

Dead. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम घर आंगन में। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपकी दोस्त राधा पाठक। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल यानी एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और आप हमें सुन सकते हैं आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी, और डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी। और आज शुक्रवार है तो आज का ये कार्यक्रम समर्पित है बुजुर्गों को। जी हाँ, एक कदम बुजुर्गों की। और आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके अनुभव, संस्कार और स्नेह से हमारे परिवार और समाज की नींव मजबूत होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने वरिष्ठ नागरिकों की। बुजुर्गों के अनुभव, संघर्ष और जीवन मूल्य नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। दादी नानी की कहानियाँ बच्चों को नैतिकता, संस्कार और पारिवारिक मूल्यों से जोड़ती हैं। पारिवारिक व्यंजन जो दादी नानी के होते हैं ना, वो केवल भोजन नहीं होते बल्कि परिवार की संस्कृति और विरासत के वाहक होते हैं। और यही वरिष्ठ नागरिक हमारे घर के बुजुर्ग हैं, जो त्योहार, रीति रिवाज और लोक परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि हम कितने भी आधुनिक हो जाए, मगर आधुनिकता को अपनाते हुए अपनी जड़ों और परंपराओं से जुड़े रहना बहुत जरूरी है।

लता मंगेशकर के स्वरों में आपने ये गीत उजाला फिल्म से सुना। और मौसम की बात तो होगी, और हम बात कर रहे हैं यादों की। यादें इंसान की सबसे अनमोल धरोहर होती हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ जीवन के अनेक खूबसूरत पल स्मृतियों में बस जाते हैं। बचपन की शरारतें, स्कूल के दिन, पहली नौकरी, परिवार के साथ बिताए गए हर पल और पुराने दोस्तों की बातें हम सोचते हैं ना तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और ऐसा ही हमारे बुजुर्गों के साथ होता है। उनके पास ढेर सारी यादें होती हैं, वो यादें जो संजो रखी हैं उन्होंने अपने दिल में। ये यादें जीवन के उतार चढ़ाव से उबरने की ताकत देती हैं। और आज की तेज रफ्तार दुनिया में पुरानी यादों को संजोना और उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी बहुत जरूरी है। बुजुर्गों के अनुभव और उनकी स्मृतियां परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। आइए आज यादों के इसी आंगन में चलते हैं और सुनते हैं ऐसे गीत जो बीते दिनों की मधुर खुशबू को फिर से ताजा कर दे।

राजा और रंग। इस फिल्म में अभी आपने लता मंगेशकर को सुना। कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन, जिसमें बातें हो रही हैं हमारे बुजुर्गों के अनुभवों की, उनकी यादों की और उनके आशीर्वाद की। और हर उम्र अपने साथ कुछ नया सिखाती है, लेकिन जीवन के लंबे अनुभव से जो सीख मिलती है ना, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। बुजुर्गों ने समय के अनेक रंग देखे हैं, हमारे माता पिता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने संघर्ष भी देखा है और सफलताएं भी देखी हैं। उनके अनुभव नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। यदि परिवार में बड़े बुजुर्गों की सलाह को महत्व दिया जाए तो कई समस्याओं का समाधान आसानी से मिल जाएगा। उनके जीवन की कहानियां प्रेरणा देती हैं और हमें धैर्य, ईमानदारी और मेहनत का महत्व समझाती हैं। और हमें उनके अनुभवों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो जो अनुभव उनके पास हैं वो कहीं से लिए हुए नहीं हैं, वो आजमाए हुए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो मेहनत और संघर्ष किया है ना, उसी से उन्हें वो अनुभव मिले हैं। और जो हम अपनी जिंदगी में प्यार बांट पाते हैं ना, सच मानिए वो प्यार हमें उन्हीं से मिला है। और उन्होंने जो प्यार दिया है वही तो हम आगे बांट पाते हैं।

फिर वही दिल लाया हूँ। इस फिल्म में भी आपने आशा भोसले को सुना। एक समय था जब जीवन में सादगी थी, खुशियां भरपूर थी, परिवार के साथ बैठकर भोजन का किया जाता था, मोहल्ले में अपनापन था, रिश्तों में आत्मीयता थी, मनोरंजन के साधन कम थे लेकिन दिलों में प्यार बहुत था। चिट्ठियां लिखी जाती थी, त्योहार पूरे मोहल्ले के साथ मनाए जाते थे, हर खुशी साझा होती थी। बुजुर्ग आज भी उस दिनों को बड़े प्रेम से याद करते हैं, क्योंकि ये जो यादें हैं ना, ये उनके मन को बहुत सुकून देती हैं। और दोस्ती और रिश्ते तो जीवन की सबसे सुंदर पूंजी होते हैं। समय बदल जाता है लेकिन सच्चे रिश्तों की मिठास कभी कम नहीं होती। बिताए हुए वो प्यारे पल हर वक्त यादों में ताजा रहते हैं। रिश्तों की गर्माहट जीवन को खुशहाल बनाती है। बुजुर्गों के लिए पुराने साथी और परिवार का साथ मानसिक और भावनात्मक संबल देता है। आज तकनीक के दौर में दिलों की दूरी कम करने की जरूरत है। आइए रिश्तों की इस मिठास को याद करें वो लोरियां जो बचपन में हमने सुनी।

मन मंदिर फिल्म की रचना आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज़ में। देखिए याद आ गया ना अपना बचपन, मुन्ना जाएगा बाजार, हम भी बाजार जाया करते थे, सभी जाते हैं, दो पैसे का चार पैसे का, जब जो पैसा चल रहा होता है उसका सामान लाया जाता है। और दादा दादी नाना नानी परिवार की अमूल्य धरोहर होते हैं, उनकी कहानियाँ उनकी लोरियाँ जो होती हैं ना, जीवन में अनुभव संस्कार और मनोरंजन का अनोखा संगम होती हैं। उनकी बातें बच्चों को भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों और परिवार की परंपराओं से जोड़ती हैं। उनके साथ बिताया गया समय जो होता है बच्चों के व्यक्तित्व को समृद्ध बनाता है। आज के डिजिटल युग में भी उनकी कहानियों का महत्व कम नहीं हुआ है, ना ही उनकी लोरियों का महत्व कम हुआ है। और गुनगुनाकर जो माँ और दादी लोरियाँ सुनाती हैं ना, उसी से और उनके सर पर जो हाथ फेरते हैं माँ और दादी, जो हाथ फेरती है बच्चों के सिर पर, स्नेही आशीर्वाद होता है, उनके ही मार्गदर्शन से परिवार मजबूत बनता है। उन प्यारे रिश्तों को याद करते रहें और उनको संजोते रहें, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारे साथ हैं, तो ये हमारे लिए ईश्वर की एक देन है। और जो उम्र होती है वो कभी भी सपने देखने या खुश रहने की राह में बाधा नहीं होती, इसलिए हमेशा हमारे बुजुर्गों को खुश रहना जरूरी है। सकारात्मक सोच, अच्छा स्वास्थ्य और सक्रिय जीवन शैली इंसान को हर उम्र में ऊर्जावान बनाए रखती है। आज अनेक वरिष्ठ नागरिक योग करते हैं, नई चीजें सीखते हैं, यात्राएं करते हैं, जगह जगह घूमते हैं, समाज सेवा में भी सक्रिय रहते हैं। उनका उत्साह युवाओं के लिए प्रेरणा है, जीवन का हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। इसलिए मुस्कुराइए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। और उत्साह के साथ सुनते हैं ये गीत, तो जिंदगी को सकारात्मक नजरिए से देखने की प्रेरणा देता है।

उमर की आवाज में। और एफएम गोल्ड पर चल रहा है कार्यक्रम घर आंगन। हमारे बुजुर्ग जो हैं वो एक चलता फिरता इतिहास है। कितने लोग मानते हैं इस बात को? जी हाँ, मैं तो मानती हूँ, क्योंकि हमारे बुजुर्ग वास्तव में एक चलता फिरता इतिहास है। उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं, उनसे सीखा है। इसलिए उनके अनुभव हमें न केवल अतीत से परिचित कराते हैं बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा भी देते हैं। क्योंकि हमारे बुजुर्ग केवल परिवार के सदस्य नहीं बल्कि इतिहास के जीवंत साक्षी होते हैं। उन्होंने समय के कई दौर और जीवन में हुए अनेक परिवर्तनों को नजदीक से देखा है। उनके जीवन के अनुभव हमें उन घटनाओं, संघर्षों और मूल्यों से परिचित कराते हैं जिन्हें किताबों में पूरी तरह समझा नहीं जा सकता। उनके संस्मरण, उनकी जीवन कथाएं समाज की अमूल्य धरोहर हैं। जी हाँ, मुझे याद है कि मेरे दादाजी मुझे बहुत सारी बातें बताते थे आजादी के दिनों की। बहुत सारी चीजें बताते थे कि 15 पैसे में ऐसा हो जाता था, 5 पैसे में ये होता था। अब पैसे, कौड़ी, ये सब चीजें तो बच्चों को पता नहीं है, लेकिन जो पैसे और बाकी चीजें हैं जो पुराने इतिहास की हैं, समाज की हैं, वो बड़े बुजुर्गों से हमारे बच्चों को पता लगती हैं, हमें पता लगी, हमसे हमारे बच्चों को पता चलेंगी। तो इसलिए जो ये संवाद होता है ना, ऐसा लगता है मानो इतिहास के पन्नों को जीवंत रूप में पढ़ रहे हैं। इसलिए हमें उनके अनुभवों का सम्मान करना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेकर जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। उनके मार्गदर्शन से नई पीढ़ी अपने भविष्य को अधिक समझदारी और संवेदनशीलता के साथ आकार दे सकती है। इसीलिए अपने बुजुर्गों को रूठने ना दें, और रूठने तो मना लीजिए फौरन।

आरजू फिल्में अपने लता मंगेशकर को सुना, और यही होना चाहिए हमारे बुजुर्गों के साथ भी कि अजी रूट घर अब कहाँ जाइएगा। बुजुर्गों क्या घर के हर रिश्ते के साथ यही होना चाहिए, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, यानी हर रिश्ते को मनाना हमारी जिम्मेदारी और मान भी जाना चाहिए। यानी हम रूठे हैं तो दूसरा अगर कोई मनाए ना और मान जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें संजो कर संभाल कर रखना पड़ता है। हम बात करेंगे राष्ट्रीय आयकर दिवस की। भारत में हर साल 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस मनाया जाता है। करदाताओं के राष्ट्र निर्माण में योगदान को सम्मानित करने के लिए और कर भुगतान के प्रति जागरूक करने के लिए। और बड़े बुजुर्गों को आयकर रिटर्न भरने में कैसे सहायता मिल सकती है वो हम आपको बताएंगे। ये तो आप जानते ही हैं कि करदाताओं की ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी 70 वर्ष की आयु के आधार पर भी यही समय सीमा है। और धारा 80 TTB के तहत बैंक, डाकघर और सहकारी बैंक की जमा पर मिलने वाले ब्याज में 50,000 रुपए तक की कटौती मिल सकती है 70 वर्ष से अधिक आयु वालों को। धारा 194P के तहत विशेष छूट मिलेगी 75 वर्ष से जो अधिक हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए, और जिन वरिष्ठ नागरिकों की उम्र 75 वर्ष या उससे अधिक है और आय का स्रोत केवल पेंशन और उसी बैंक से मिलने वाला ब्याज है, उन्हें ITR भरने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने बैंक में फॉर्म 12BBA जमा करना होगा, उसके बाद बैंक उनकी इनकम टैक्स योग्य आय की गणना करके TDS काट लेगा। और धारा 80 TTB बुजुर्ग अपने बैंक, पोस्ट ऑफिस और सहकारी बैंकों में जमा राशि से मिलने वाले ब्याज पर 50,000 तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। और पेंशन भोगी अपनी पेंशन आय से 50,000 रुपए तक की स्टैंडर्ड कटौती का लाभ उठा सकते हैं। और बुजुर्ग माता पिता यदि हमारे साथ रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम या चिकित्सा खर्चों पर धारा 80D के तहत छूट का दावा किया जा सकता है। अब दस्तावेज क्या चाहिए हमारे बुजुर्गों को, अगर ITR फाइल करनी है तो बैंक पासबुक ले लीजिए, 26AS फॉर्म ले लीजिए, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट और ब्याज के प्रमाण पत्र का को निकाल लीजिए। कागज लेकर आप कहीं से भी ITR भरवा सकते हैं। वेतन, पेंशन और ब्याज से आय वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए आमतौर पर ITR 1 यानी सहज फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ये बहुत आसान है। आपको इनकम टैक्स इंडिया ई-फाइलिंग पर जाकर उनके पैन और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें और फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है। और ये सब जानकारी वहां पर भी है जहां आप फॉर्म भरेंगे, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब अंत में हम तो यही कहेंगे कि दादा और दादी का अनुभव, नाना और नानी का अनुभव, हमारे बुजुर्गों का अनुभव एक ऐसी अनमोल किताब है जिसमें जिंदगी जीने का असली सलीका, हर मुश्किल का समाधान छुपा होता है। और उनके दशकों पुराने अनुभव हमें न सिर्फ संस्कारी बनाते हैं बल्कि व्यवहारिक रूप से जीना भी सिखाते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत फिल्म दुनियादारी से है और कार्यक्रम घर आगम का यही अंतिम गीत है और इस कार्यक्रम से मुझे यानी राधा को दें इजाजत, लेकिन सुनते रहिए कार्यक्रम घर आंगन और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, आदर कीजिए, उनके साथ बैठिए, समय बिताइए और उनके संघर्षों और अनुभवों का लाभ उठाइए, यही हम आपसे कहेंगे।

London. आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोना वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण बार बार बाधित हुई। दोपहर 12 बजे दोनों सदनों के फिर से शुरू होने पर विपक्षी दलों ने सदन को सुचारू रूप से न चलने दिया, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार 11 बजे तक और राज्यसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पटियाला जिला कार्यालय के एक प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की।

0: National President Nitin Abin has said the government stands firmly with the citizens affected due to heavy rainfall and flood situation in Gujarat. In a social media post, the BJP president stated today that the Bharatiya Janata Party stands firmly with the affected citizens in the spirit of service and dedication and is actively providing cooperation in the relief efforts. In Jammu and Kashmir, amid the continued closure of the Jammu-Srinagar National Highway due to heavy rainfall and landslides, the Northern Railway yesterday introduced a special train between Srinagar and Sri Mata Vaishno Devi Katra to facilitate stranded passengers. The special service helped evacuate over 600 passengers affected by disruption in road connectivity. India's Anahat Singh has entered the semi-finals of the World Junior Squash Championships after beating Egypt's Habiba Rizk in the quarterfinals. With this win, Anahat has become the first Indian to reach back-to-back semi-finals in the championship. Five-time world champion Vishwanathan Anand has taken charge of the International Chess Federation as interim president after its Russian head was placed on the latest European Union sanctions list. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय हुआ है हमारे रेडियो कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम शुरू करने से पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
6: आरबीआई कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आदाब, सत श्री अकाल, आपकी दोस्त और इस लाइव रेडियो कार्यक्रम की होस्ट रैना तंवर का स्वीकार कीजिए प्यार भरा खुशनुमा नमस्कार। तो श्रोताओं, आज के हमारे इस कार्यक्रम एक ही फिल्म से में हम बात करेंगे 1983 में रिलीज हुई बेहतरीन और भावुक रिश्तों से बंधी फिल्म, जो न केवल इंसानी रिश्तों के उलझे तानों बानों को दिखाती है बल्कि रिश्तों की जटिलताओं, मानवीय संवेदनाओं और क्षमा पर आधारित एक कालजयी कृति पर आधारित फिल्म है। जी हाँ, तो श्रोताओं जुड़े रहिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो है एक ही फिल्म से। जल्दी से हमें मैसेज करें और बताएं कि आज हम किस फिल्म के गलियारों से गुजरेंगे। तो करना क्या है, बस यही सही जवाब के साथ हमें ईमेल आईडी कर सकते हैं, यानी कि मैसेज करके हमें आप अपना संदेश भेज सकते हैं, जो कि है हमारा ईमेल आईडी iprradiodelhi@gmail.com iprradiodelhi@gmail.com। जो भी हमें सबसे पहले सही जवाब से रूबरू कराएगा वो हमारे आज के इस कार्यक्रम का फेवरेट श्रोता का खिताब पाएगा। वैसे तो खिताब सभी पा चुके हैं, क्योंकि आप सभी हमें इतना बेहतरीन, बेहद प्यार से हमें अपने मैसेज भेजते हैं, तो हमारे लिए सभी फेवरेट हैं। लेकिन थोड़ा सा खेल तो बनता है ना, देखिए रहना है तो कुछ तो आपको कहना है ना, तो जल्दी से फोन उठाएं और हमें अपने सही जवाब भेजें, क्योंकि आपके सही जवाब का हमें रहेगा इंतजार। और इंतजार की घड़ियों को थोड़ा सा और खूबसूरत पल बनाने के लिए सुनते हैं इसी फिल्म से जुड़े ये गीत, जिसे सुनकर हर किसी के बचपन याद आ जाता है और हर किसी का जो बचपन है ना वो मुस्कुरा उठता है कुछ इस तरह से।

जी हाँ, ये गाना सुनकर किसको अपना अपना बचपन याद आ गया, मुझे तो आ गया और मुझे उम्मीद है कि मेरे श्रोताओं को भी आ गया होगा। और सही जवाब हमें बहुत सारे लोगों ने भेजा है, हमारे सारे श्रोता जो हैं बहुत ही एक्टिव हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। और सबसे पहले जिसने पहचाना है वो हैं हमारे अजीत भावस्कर जी, जो कि विरम गांव गुजरात से हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, आपको आज हमारे इस कार्यक्रम का फेवरेट श्रोता का खिताब मिलता है। तो बिल्कुल हताश न होए, जो भी हमारे श्रोता हैं सारे ही हमारे लिए फेवरेट है। एक छोटा सा ये बहाना है, आपसे कुछ तो हमें कहलवाना है ना। तो हम आज बात कर रहे हैं 1983 में रिलीज हुई फिल्म मासूम, जिसका निर्देशन शेखर कपूर जी ने किया था। और ये जो गाने की बात हम बात कर रहे थे अभी, लकड़ी की काटी, दिलचस्प बात यह है कि इसकी रिकॉर्डिंग के दौरान बच्चों को बिल्कुल स्कूल के माहौल जैसा माहौल दिया गया। कहते हैं ना कि अगर वही माहौल दो तो उसी तरीके से एक्ट भी अच्छा हो जाता है और उसी में रंग जाते हैं सभी। तो इसी तरह से स्कूल का माहौल दिया गया और ताकि उनकी हंसी और शरारतें बनावटी ना लगें। यही वजह है कि आज का ये जो गीत है ना, बच्चों का आज भी फेवरेट है और मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है। तो हम जहाँ बता रहे हैं इस फिल्म के बारे में, और फिल्मों में से एक फिल्म ये कहते हैं ना, शेखर जी की जो निर्देशन की ये फिल्म है, तो उनकी ये जो निर्देशित फिल्म है वो एक फिल्म उन फिल्मों में से एक है। इसने उन्हें एक ऐसा खिताब दिया, संवेदनशील निर्देशक का। जी हाँ, उनकी जो पहचान बनी वो इसी फिल्म से बनी। कहा जाता है कि ये फिल्म अंग्रेजी उपन्यास मैन वुमेन

चाइल्ड इस फिल्म से प्रेरित थी। इस फिल्म से में जो किरदार थे वो तो आप सभी जानते हैं, नसरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, जुगल हंसराज, उर्मिला मातोंडकर, आराधना एक बाल कलाकार के रूप में काम करा था और सईद जाफरी जैसे कलाकारों ने अपना अभिनय देकर इसे और खास बना दिया। और आप हमें मैसेज कर रहे हैं, इससे भी आप हमारे इस कार्यक्रम को खास बना रहे हैं। और फिर हमें राजकुमार जी ने मैसेज किया है जिला हिसार से, और उसके बाद हमें बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, लेकिन हम सुनते हैं पहले ये वाला नगमा।

ये आवाज भूपेंद्र सिंह और सुरेश वाडकर की आवाज का इतना बेहतरीन गीत, और कहते हैं एक ही धुन लेकिन एहसास बिल्कुल अलग। जी हाँ, पंचमदा यानी आर डी बर्मन की सबसे खूबसूरत बात यही थी कि उनकी फिल्म में, ये जो फिल्म है ना, इसमें वाद्य यंत्र बहुत ही सीमित थे, बहुत ही कम थे, लेकिन उनका जो संगीत है इतना हावी हुआ कि दिलों पर छा गया। और हम बता दें कि हमारे पास जो मैसेज आ रहे हैं बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिल्म की कहानी की बात करें तो ये फिल्म डी के की है, जिसका रोल है नसरुद्दीन शाह ने।

है और इंदु का रोल शबाना आजमी ने निभाया और उनका एक खुशहाल वैवाहिक जीवन से शुरू होती है कहानी। उनकी दो बेटियां पिंकी यानी उर्मिला मातोंडकर और मिनी यानी आराधना बाल कलाकार के रूप में काम किया। कहानी में तूफान तब आता है जब डीके को पता चलता है कि अतीत में एक रिश्ते से उनका एक बेटा भी है और जिसका नाम राहुल है। राहुल का किरदार निभाया बाल कलाकार जुगल हंसराज जी ने और राहुल की मां की मौत के बाद उसे डी के घर आना पड़ा। पति के धोखे से टूटी इंदु के लिए उस अनाथ बच्चे को अपनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है जिससे वो पूरे घर में भावात्मक फीलिंग्स जो होती हैं वो उथल पुथल हो जाती हैं, सबके दिल टूट जाते हैं। कहा जाता है कि रिलीज के शुरुआती दिनों में दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए इतने उत्सुक नहीं थे, लेकिन जब किसी एक ने देखा और फिर उसने दूसरे को बताया, कहते हैं ना माउथ पब्लिसिटी के बाद सिनेमा घर में भीड़ जुटने लगी और बाद में ये ब्लॉक

मैसेज किया कमल पाठक गायक मल्होत्रा अनारकली पंजाब से हमें मैसेज कर रहे हैं। हीरामणि वर्मा भाटापारा से हमें मैसेज कर रहे हैं। आर कुमार जी वंडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू पिंकी लवली आरती अरोड़ा और धर्मेंद्र छिप्पा जी ने हमें कपिल छिप्पा पूजा परिहार जी हमें मैसेज कर रहे हैं। उन्होंने भी सही जवाब दिया है। सभी ने सभी सही जवाब दिया। बस सबसे पहले जिसने दिया बस वही एक खेल था हमारे साथ। नमस्कार। और हमें सुरेश जाटकर जी ने हमें मैसेज किया है। बेबी उर्मिला मतौड़कर सुरेश जाधव अनीता जाधव नेहरू चौक। इसी तरीके से हमें मैसेज करते रहिए और सुनते हैं हमारा ये अगला नगमा।

हाँ, जिंदगी में सबके साथ कुछ ना कुछ होता है और ये गाना जो है ना दिल को छू जाता है। आज भी अगर कोई सुनता है तो उसे अपनी जिंदगी की वही पिछली उथल पुथल याद आ जाती है। वो सभी की जिंदगी में होती है, तो कभी भी परेशान ना होए। और ऐसा लगता ना कि गुलजार साहब ने ये गीत के जो बोल लिखे वो एक मात्र पात्र नहीं थे, बल्कि एक जिंदगी का एक सवाल है जो हमसे, हम अपने आप से, खुद से पूछ रहे हैं कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये सब आपके साथ नहीं जनाब, ये सभी के साथ होता है। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता है, तो निराश और उदास कभी ना होए। एक कहते हैं ना, लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ते रहें। अब हम इस गीत के दो संस्करण रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं कि एक लता मंगेशकर की आवाज़ में और दूसरा अनूप घोषाल, जो कि अभी आपने सुना। दोनों ही अलग अलग परिस्थितियों में फिल्माए गए, इसलिए दोनों का भाव भी अलग है। जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं एक ही फिल्म से कार्यक्रम। आज हम लेकर हाजिर हैं फिल्म मासूम। श्रोताओं, कहा जाता है कि इस फिल्म के गीत और स्क्रीन प्ले लिखने के लिए पहले जावेद अख्तर साहब को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनकी फीस ज्यादा होने के कारण बाद में ये काम गुलजार साहब को सौंपा गया। गुलजार साहब ने अपने गीतों में बिना किसी भारी भरकम शब्दों के रिश्तों को, एक कहते हैं रिश्तों की जो टूटन और जुड़ाव जो था ना, बेहद सरल भाषा में देकर उन गीतों को इतना बेहद भावुक बना दिया कि आज सुनते हैं तो आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आ ही जाते हैं। बिट्टू गनेजा जी हमें, सुरेश गंगेजा और पूनम जी ने हमें मैसेज किया है, पीएस नावस्कर जी ने हमें मैसेज किया है, और निर्मला विशाल नावकर और उर्मिला माथौन जुगल हंसराज ने, उन्होंने जवाब दिया है कि बाल कलाकार थे अजीत भास्कर जी ने, और नरेंद्र राग सुथर जो नमस्कार है ना जी, हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत नमस्कार आपका। नौहर राजस्थान से नरेंद्र सुधार, मनोज सुधार जी ने हमें मैसेज किया है, और धर्मेंद्र छिप्पा जी ने हमें मैसेज किया है, और इसी तरीके से रोहित वशिष्ठ जी ने हमें मैसेज किया है, प्रेम सागर, शोभा लता, और नाभा जिला पटियाला पंजाब सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमोद कौर, और धर्मेंद्र शिपा जी, स्वर्ण सिंह जी, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरनाल, अविराज, प्रकाश वर्मा जी, प्रिंस निखिल यशस्वी, और राजकुमार जी ने हमें मैसेज किया है, और उन्होंने हमें, और भी हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, इसी तरीके से मैसेज करते रहिए। सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर डाबली रोड अकोला से हमें मैसेज कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। और सुनते हैं ये अगला नगमा जो कि बहुत ही खूबसूरत है और मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा।

हमें मैसेज किया है दिलदार मेरी ज्योति जानवी दिशांत जी ने और संजय ढींगिया जी ने, नमन ढींगिया पार ढींगिया और भागवत वर्मा, शांति लीलावती विनीता, रुद्र और पिपरिया से कमलकांत, दीपा रिमझिम, मुकेश, श्रद्धा, राधे, दीपक, अंकु, अदिति और जॉन, रोजी, पर्ल, विलिस, डिक्रेस तो, और इन्होंने हमें मैसेज किया और उन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वर्ण सिंह जी, दलजीत जी, इन्होंने मैसेज किया, मुकेश भाटा जी ने मैसेज किया है, लालगिरी जी ने हमें, गोस्वामी हेमलता हीना हर्षित, खुशी गोस्वामी जी ने मैसेज किया है, बसंत कुमार सिन्हा जी ने हमें मैसेज किया है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी श्रोताओं का। इसी तरह से जुड़े रहिएगा हमारे साथ। निसार अली जी ने भी हमें मैसेज किया है।

जी हाँ, मासूम उस वर्ष की सबसे बेहतरीन और संवेदनशील पारिवारिक फिल्मों में से एक थी, जिसे कई फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा गया। तो श्रोताओं, समय की पाबंदी की वजह से रैना तवर लेती है इस कार्यक्रम से इजाजत। फिर मिलेंगे हिंदी सिनेमा की एक और यादगार फिल्म, उससे जुड़े अनसुने किस्सों, सदाबहारों और यादगार फिल्म, उससे जुड़े अनसुने किस्से और सदाबहार गीतों के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें, कुछ करें ऐसा जो दूसरों के चेहरे पर दे मुस्कुराहट और आपके दिल को दे सुकून। एक अच्छे और सभ्य नागरिक बने, जहां तक हो सके दूसरों की मदद करें। सुनते रहें आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर, पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। नीट मुद्दे ते लगातार हंगामे कारण लोकसभा सोमवार तक उठा दिती गई है। राज्यसभा की कार्रवाई भी दोपहर बाद 2 बजे तक उठा दिती गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र ते राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी नू नीट यूजी पेपर लीक तो बाद सुधारा नू लागू करन विच हुई प्रगति बारे वेरवे सहित हलफनामा दायर करन दा निर्देश दिता है। इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अज एक कथित बैंक धोखाधड़ी नाल जुड़े मनी लॉन्डरिंग मामले दे संबंध विच पंजाब, दिल्ली ते उत्तर प्रदेश विच 8 थावां ते तलाशियां लईआं। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे हेठले जम्मू कश्मीर विच हो रहे दमन नू नजरअंदाज करन लई संयुक्त राष्ट्र प्रति निराशा प्रगट कीती है। ते भारत दी अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप दे सेमीफाइनल विच पहुंच गई है। हुण खबरां विस्थार नाल। संसद विच लगातार पंजवें दिन हंगामा जारी रहन कारण लोकसभा दी कारवाई सोमवार तक मुलतवी कर दिती गई है। पहली बार उठाए जाने तो बाद जदों सभा ने दोपहर 12 बजे अपनी कारवाई मुड़ शुरू कीती तां संसदीय मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन तो ही नीट पेपर लीक मुद्दे ते चर्चा करने लई तैयार है। उन्हें कहा कि कांग्रेस पार्टी वालों लाईया गई कुछ शर्तां कारण चर्चा रुकी हुई सी। उन्हें यह भी कहा कि सारे मैंबर इस मुद्दे ते उसारू चर्चा की इच्छा रखते ने। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश नू भरोसा दिता है कि पेपर लीक मामले नू हल करने लई सख्त कानून बनाए जाणगे। श्री रिजिजू ने कहा कि नीट पेपर लीक मुद्दे का विरोध कर रहे प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भी चर्चा की जरूरत से जोर दिता है। उन्होंने कहा कि जेकर संसद मैंबर चर्चा तो बचते ने ते बहाने बनाते ने तो यह देश नू नकारात्मक सुनेहा भेजेगा।
2: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल ऐसा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को तरफ समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के एमपी भी निजी तौर पर सबसे अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
1: इस तो पहला नीट पेपर लीक नू लैके विरोधी धिर दे विरोध ते विद्यार्थियों दे मुजारियां दे मुद्दे ते संसद दे दोवे सदनां नू दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दिता गया। जदों लोकसभा ने सवेरे 11 बजे अपनी कारवाई शुरू कीती तां सदन ने कारगिल जंग विच सर्वोच्च कुर्बानी देण वाले भारतीय हथियारबंद फौजां दे शहीदां नू श्रद्धांजलि भेंट कीती। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि 26 जुलाई नू कारगिल विजय दिवस की 27वीं वरेगंढ है। उन्होंने कहा कि यह दिन फौजियां दी अदुत्ती हिम्मत, बहादुरी और सर्वोच्च कुर्बानी का प्रतीक है। श्री बिरला ने भी कहा कि कारगिल जंग दौरान भारतीय हथियारबंद फौजां दे बहादुर फौजियां ने देश की प्रभुसत्ता की रक्षा लई मुश्किल पहाड़ी इलाकों, मुश्किल हालात और खराब मौसम का सामना करते हुए बेमिसाल हिम्मत और दृढ़ता का विखाला किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश इन अमर शहीदों का हमेशा करदार रहेगा जिन्होंने मातभूमि की सेवा विच अपनी जाना कुर्बान कर दित्तियां। शहीदां दी याद विच सदन विच मौन भी रखा गया। नीट पेपर लीक मामले ते राज्यसभा की कार्रवाई भी दोपहर बाद 2 बजे तक मुलतवी कर दित्ती गई है। जदों दोपहर 12 बजे पहली बार मुलतवी होने तो बाद सभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की थी पर विरोधी धिर ने सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए रौला रप्पा जारी रखा। इस तो बाद सदन नू दोपहर बाद 2 बजे तक मुलतवी कर दिता गया। राज्यसभा की कार्रवाई सवेरे 11 बजे शुरू होने ते भी सदन ने कारगिल जंग के शहीदां नू श्रद्धांजलि दित्ती। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि कारगिल विजय दिवस 1999 की कारगिल जंग विच भारत की जित की याद दवांदा है। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सभा हथियारबंद बलों प्रति अपनी डूंगी शुक्रगुजारी प्रकट कर दी है। फौजियां के सम्मान विच राज्यसभा विच भी मौन रखा गया। इस तो बाद स्पीकर ने सिफरकाल शुरू करने की कोशिश की थी और विरोधी धिर के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक और इस मामले से विद्यार्थियों के विरोध का मुद्दा उठाया। रौले रप्पे तो बाद सदन नू दोपहर 12 बजे तक मुलतवी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने विभागों नू पेपर लीक नाल निजिठण लई फास्ट ट्रैक अदालतों लई तजवीज तैयार करने के निर्देश दिते। विभागों ने लगातार काम किया कल देर रात उन्होंने खरड़ा

0: का नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के वाकयात पर सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। उन्होंने तेजी से काम करने वाली अदालतों और कसूरवारों को सख्त सजा देने की तजवीज़ से मुतालिक बिल को जल्द मंजूर कराने का यकीन दिलाया है। पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक वाकयात पर हंगामा अब भी जारी है। लोकसभा की कार्रवाई अपोजिशन की तरफ से हंगामे की वजह से दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और एनटीए को हिदायत दी है कि वो नीट यूजी पेपर लीक के बाद इस्लाहात पर अमल दरामद में पेशरफ से मुतालिक तफसीली हलफनामे दाखिल करे। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में अवाम की आवाज को दबाए जाने को नजरअंदाज करने पर अक्वामे मुत्तहिदा की मजम्मत की है। भारत ने पाकिस्तान पर अवाम के हकूक को मुनज्जम तौर पर कुचलने का इल्जाम आयद किया है। भारत के महकमाए मौसमियात ने मशरकी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में आज बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और भारत की अनाहत सिंह आलमी जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने महकमों से कहा था कि वो पेपर लीक के वाकयात से निमटने के लिए तेज रफ्तार अदालतें तश्कील देने के लिए एक तजवीज तैयार करें। उन्होंने कहा कि इन महकमों ने अनथक काम किया और उन्हें कल देर रात इसका मुसव्वदा पेश कर दिया गया। कल रात एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि इस मुसव्वदे में तेजी से काम करने वाली अदालतों और सख्त सजाओं की शिकें तश्कील दी गई हैं। इस मुसव्वदे पर आज काबीना बहस व मुबाहिसा करेगी। उन्होंने कहा कि इस मुसव्वदे में काबिनी रुफका की तजवीज शामिल किए जाने के बाद ये मुसव्वदा कतई शक्ल इख्तियार कर लेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब पीर को पार्लियामानी इजलास का दूसरा हफ्ता शुरू होगा, हुकूमत इस बिल को ऐवान में जल्द अज जल्द मंजूर कराने की कोशिश करेगी।
2: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल ने आज कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर मुसलसल जोर दिया है कि तलबा के मफादात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में आकाशवाणी से बात करते हुए जनाब पाल ने कहा कि हुकूमत ने इम्तिहान से मुतालिक बदउनवानियों के खिलाफ कार्रवाई को मुस्तहकम बनाने की गरज से एक कानून बनाने से मुतालिक अपने इरादे का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानब बीजेपी की राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट राहुल सिन्हा ने आज कहा कि वज़ीर आज़म मोदी नीट पेपर लीक मामले में कार्रवाई करने से मुतालिक अपनी यकीन दहानी को हर सूरत हाल में पूरा करेंगे। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानब से खसूसी तौर पर नामजद तेजी से समाअत करने वाली अदालतें कायम करने के फैसले की सताइश की है, ताकि पेपर लीक से मुतालिक ज़ेरे इल्तवा केसों की समाअत की जा सके। मीडिया से बात करते हुए जनाब मेघवाल ने कहा कि तेजी से समाअत करने वाली ये अदालतें यौमिया बुनियाद पर इन केसों की समाअत करेंगी, ताकि नौजवानों को इंसाफ फराहम हो सके।
3: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में मरकजी वुजरा जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में 26 दिन के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। इससे पहले पार्लियामेंट के मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्ता 65 अराकीन उनके पास आ चुके थे और उन खतों पर दस्तखत कर चुके थे, जिनमें उनसे भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की गई थी। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने वाले उस वीडियो को खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान एक तालिबे इल्म की मौत हो गई है। वीडियो में ये इल्जाम भी लगाया गया है कि पुलिस ने इस तालिबे इल्म की वालिदा की शिकायत पर एक

0: एफआईआर दर्ज करने से भी इनकार कर दिया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के फैक्ट चेक यूनिट ने वजाहत की है कि ये दावा फर्जी है। यूनिट ने कहा है कि दिल्ली में एहतजाज से वाबस्ता कोई मौत नहीं हुई है और ये कि मस्कुरा खातून से मुतालिक वायरल वीडियो एआई से बनाया गया डीप फेक है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। लोकसभा में आज लगातार पांचवें दिन शोरगुल जारी रहने के बाद ऐवान की कार्यवाही पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज पहली मर्तबा मुलतवी किए जाने के बाद दोपहर 12 बजे जब ऐवान की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर बात करने के लिए तैयार है।
1: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल ऐसा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को तरफ समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के एमपी भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी नीट मामले पर हंगामे के सबब दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज मरकज और इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए को हिदायत दी है कि वो नीट यूजी पेपर लीक के बाद की गई इस्लाहात पर अमल दरामद में जो पेशरफ्त हुई है उसके बारे में तफसीली हलफनामे दाखिल करे। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराध्य पर मुश्तमिल एक बेंच ने नीट पेपर लीक केस की समाअत करते हुए कहा कि इस हलफनामे में उन इकदामात का लाजिमी तौर पर जिक्र किया जाए जो इस्लाहात को इदारा जाती बनाने के लिए किए गए हैं, न कि उन इकदामात का जिक्र किया जाए जो इस सिलसिले में आरजी तौर पर किए गए हैं। बेंच ने कहा कि वो इस मामले पर करीबी नजर रखे हुए है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो मरकज की नुमाइंदगी कर रही हैं कहा कि हुकूमत बच्चों के इन मामलों से निमटने के लिए काफी आगे तक कार्रवाई करने को तैयार है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा से अफसोस जाहिर किया है कि वो पाकिस्तान में खासतौर पर उसके जेर कब्जा कश्मीर में लोगों की आवाज दबाए जाने को नजरअंदाज कर रही है जबकि उसने दूसरी जगहों पर इस तरह के वाकयात की मजम्मत की है। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर पीओके में अवाम के हकूक को मुनज्जम तौर पर कुचले जाने की मजम्मत की है। भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने पाकिस्तान के हाथों इंसानी हकूक की पामाली और मकबूजा कश्मीर नीज पूरे मुल्क में आजादी को कुचलने के वाकयात का जिक्र किया। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज मशरकी राजस्थान गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में बहुत शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने आइंदा 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश कोंकण गोवा मध्य प्रदेश ओडिशा पंजाब सौराष्ट्र कच्छ और उत्तराखंड में भी शदीद बारिश की पेशगोई की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरक खेलों में शिरकत करने वाले भारतीय दस्ते के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि भारतीय एथलीट्स जोशो खरोश अजमे मुसम्मम और बेहतरीन कारकर्दगी के जज्बे के साथ इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के एथलीट्स की सलाहियत काबिलियत और लगन से बेशुमार भारतीयों को तरगीब फराहम होगी। स्क्वॉश में भारत की अनाहत सिंह वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। वो क्वार्टर फाइनल में मिस्र की हबीबा रिज्क को 11-7 11-5 6-11 और 11-9 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची हैं जहां उनका मुकाबला मिस्र की खिलाड़ी बार्ब सामेह से होगा। और अब आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के वाकयात पर सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। उन्होंने तेजी से काम करने वाली अदालतों और कसूरवारों को सख्त सजा देने की तजवीज से मुतालिक बिल को जल्द मंजूर कराने का यकीन दिलाया है। पार्लियामेंट में नीट पेपर लीक वाकयात पर हंगामा अब भी जारी है। लोकसभा की कार्रवाई अपोजिशन की तरफ से हंगामे की वजह से दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और एनटीए को हिदायत दी है कि वो नीट यूजी पेपर लीक के बाद इस्लाहात पर अमल दरामद में पेशरफ्त से मुतालिक तफसीली हलफनामे दाखिल करे। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में अवाम की आवाज को दबाए जाने को नजरअंदाज करने पर अक्वामे मुत्तहिदा के खिलाफ आवाज उठाई है। भारत ने पाकिस्तान पर अवाम के हकूक को मुनज्जम तौर पर कुचलने का इल्जाम आयद किया है। और भारत की अनाहत सिंह आलमी जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में दाखिल हो गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन

0: With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद ढाई महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
3: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
4: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल ऐसा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को तरफ समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के एमपी भी निजी तौर पर सबसे अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते हैं।

0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
1: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
0: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
2: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
0: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री को पद से नहीं हटाया जाएगा, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों का स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान देने के वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि वीडियो फर्जी है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है जो गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित

3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधि पूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।

0: से खचाखच भरी हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन इंडिया EU स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर सेंट्रल टू द कंटेंपरेरी पार्टनरशिप विथ ए कंबाइंड मार्केट ऑफ नियरली 2 बिलियन पीपल एंड एन इकोनॉमिक जोन ऑफ अराउंड $25 trillion। द इंडिया EU FTA इज एमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन द वर्ल्ड।
1: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989 जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बाब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
3: दक्षिण गुजरात में 2 दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले 6 घंटों में उत्तर गुजरात के वाओथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है। किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में NDRF SDRF की कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, 684 किलोहर्ट्ज़ FM 100.1 MHz और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी करगिल है। सामिन पेश खिदमत है एनसीआरटी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश, आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जीवन के दुख हमें सुधरने और आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, जबकि जीवन में लगातार सुख कभी कभी हमारे आत्म विकास में बाधा बन सकता है।
3: आपने बहुत सुंदर विचार भेजा, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: पुराना तालाब डुमराव से वली उल्लाह अंसारी जी,
3: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर,
2: भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा,
3: और गाँव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, अनाया गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और बेटी प्रियांशी।
2: अयोध्या धाम से राजबाबू शर्मा, रामबाबू शर्मा, राजबाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीना पांडे और विनय शंकर पांडे के साथ साथ नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: धन्यवाद आप सबको और स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में।
3: श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के एक अनूठे उत्सव की।
2: अब तक हमने असम, नागालैंड और झारखंड के उत्सवों की चर्चा की, आज रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां का अनूठा उत्सव है कैल पोध। ये उत्सव कर्नाटक राज्य के कुर्ग क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
3: तो श्रोताओं, आपको बता दें कि कुर्ग भारत के सबसे सुंदर और रमणीय स्थानों में से एक है। यहाँ की हरी भरी वादियाँ और पर्वतीय प्राकृतिक सुंदरता सबका मन मोह लेती है
2: जी।
3: यहाँ के खूबसूरत कॉफी के बाग दुनिया भर में जाने जाते हैं, इसीलिए कुर्ग को कर्नाटक का स्कॉटलैंड कहा जाता है।
2: इसी कुरुक्षेत्र में रहती है कोडावा जनजाति। कोडावा लोग प्राचीन भारत में योद्धा समुदाय माने जाते थे और इनकी वीरता की गाथाएं वहां की लोक कथाओं में भी मिलती हैं।
4: भारतीय सेना में भी इनका योगदान बहुत अहम रहा है।
2: तो हम बात कर रहे थे कैल पोध उत्सव की। सबसे पहले जानते हैं कि कैल पोध का क्या अर्थ है।
3: श्रोताओं, कैल का मतलब है हथियार या उपकरण और पोध का मतलब है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। यह हर साल 3 सितंबर को मनाया जाता है। तब तक धान की रोपाई हो चुकी होती है।
2: उस दिन कड़ावा जनजाति के लोग अपने घर से हथियार और कृषि के उपकरण निकालते हैं, उन्हें फूलों से सजाते हैं। फूलों में खासकर फ्लेम लिली फूल का इस्तेमाल किया जाता है, जो वहाँ प्रचुरता से पाया जाता है। अब थोड़ी सी जानकारी फ्लेम लिली फूल के बारे में।
3: श्रोताओं, ये भारत, अफ्रीका और एशिया के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला अत्यंत आकर्षक और दुर्लभ फूल है
2: जी।
3: इसकी पंखुड़ियाँ तेज लाल और पीले रंग की होती हैं, जो आग की लपट की तरह दिखाई देती हैं। इसी कारण इस फूल का नाम फ्लेम लिली पड़ा
2: जी।
3: कुर्ग की वादियों में जब ये फूल खिलते हैं तो बहुत ही मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हैं। ये फूल तमिलनाडु का राजकीय फूल भी माना जाता है।
2: उत्सव के दिन मवेशियों को भी नहला धुलाकर फूलों से सजाया जाता है और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वे खेती बाड़ी के कार्य में सबसे बड़े मददगार हैं।
3: बता दें श्रोताओं कि हथियारों की पूजा से संकेत हिंसा का नहीं है, लेकिन सुरक्षा का है
2: जी।
3: वे हथियारों के प्रति आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में किसी भी आक्रमण के समय उनके कारण ही, यानी हथियारों के कारण ही सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी थी
2: जी।
3: साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पुराने समय में उन्हें अपने परिवार, पशुओं और गांव की रक्षा खुद करनी होती थी। इसी कारण हथियार उनकी सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक बन गए।
2: कैल पौध उत्सव में कृषि उपकरणों का भी सम्मान किया जाता है, क्योंकि वे भी खेती बाड़ी का प्रमुख माध्यम हैं। पूजा के बाद कुरुक्षेत्र में जगह जगह पर समारोह होते हैं। जगह जगह पर विशेष साज सज्जा के साथ मेले लगते हैं। कोडावा समुदाय की वीरता की कथाओं की झांकी प्रस्तुत की जाती है।
3: श्रोताओं, कोडावा संस्कृति से संबंधित चित्रकला और नृत्यों का भी सामूहिक प्रदर्शन होता है। उस दिन कोडावा पुरुष अपनी पारंपरिक पोशाक पहनते हैं, जिन्हें चक्कली कहा जाता है।
2: कैलपोध उत्सव के दिन पारंपरिक व्यंजनों की भी भरमार रहती है। चावल की बनी कंडबट्टू विशेष लोकप्रिय है। इस दिन लोग एक दूसरे को फूलों की भेंट देकर सम्मानित करते हैं।
3: श्रोताओं, कैलपोध उत्सव कोडावा जनजाति की योद्धा संस्कृति, कृषि जीवन और गौरवशाली परंपराओं की याद दिलाता है।
2: ये भारत के दुर्लभ उत्सवों में से एक है, जहां हथियारों की पूजा हिंसा के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक कर्तव्य, सुरक्षा और आत्मसम्मान

0: के प्रतीक के रूप में की जाती है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, कैलपोध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: कैलपोध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है?
1: 8800-440-5599 है हमारा IVRS नंबर और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने उत्तर व संदेश भेज सकते हैं।
0: फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है दो मेंढकों की यात्रा।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुद्रित एक जापानी मनोरंजक हास्य लोक कथा पर आधारित है, जिसमें दो मेंढकों की मजेदार यात्रा का वर्णन किया गया है।
1: दो मेंढकों की यात्रा।
2: नमस्कार साथियों, आज हम आपसे साझा करने जा रहे हैं एक मजेदार जापानी लोक कथा। कुछ समय पहले की बात है, जापान में दो मेंढक रहते थे। एक मेंढक ओसाका नगर के पास एक छोटे से खड्ड में रहता था और एक क्योटो नगर के बाहर एक छोटे से तालाब में निवास करता था। एक दिन ओसाका नगर के मेंढक के मन में एक विचार आया।
3: क्या वही शहर, वही गलियां, वही लोग, इस जगह पर रहते रहते अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे जरा बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए।
2: ये संयोग ही था कि उसी समय क्योटो में रहने वाले मेंढक के मन में भी यही विचार आया कि उसे भी बाहर निकलकर कुछ भ्रमण करना चाहिए। अगले ही दिन दोनों मेंढकों ने अपनी अपनी यात्रा शुरू कर दी। दोनों नगरों को जोड़ने वाला एक ही मार्ग था। रास्ते में दोनों की मुलाकात हो गई। ओसाका के मेंढक ने क्योटो के मेंढक से पूछा,
3: तुम कहाँ जा रहे हो मित्र?
4: मित्र, मैं ओसाका जा रहा हूँ।
3: और तुम? मैं क्योटो जा रहा हूँ।
2: दोनों मेंढकों ने लंबा रास्ता तय किया था। वे बहुत थक भी गए थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना थोड़ा आराम भी कर लिया जाए। वे पास स्थित एक बड़ी सी चट्टान की छाया में जा बैठे और बातचीत करने लगे।
3: यहाँ थोड़ा आराम है, थोड़ा सुस्ता लिया जाए है? तो जरा मुझे भी बताओ कि यहाँ तक की यात्रा कैसी रही?
4: भाई, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। रास्ता बहुत सुंदर है। तुम तो जानते ही हो कि ये चेरी ब्लॉसम का समय है। चारों ओर चेरी के फूलों की भरमार है। और हाँ, जब मैं एक पहाड़ी के पास से गुजर रहा था ना, तो ट्रेन भी देखी। वहाँ रहने वाले एक मेंढक भाई से पूछा तो उसने बताया कि इसे बुलेट ट्रेन कहते हैं। क्या तेज गति थी। जब तक मैं ठीक से देख पाता तो वो गायब हो गई। कहते हैं कि इस ट्रेन से सिर्फ 15 से 20 मिनट में ओसाका से क्योटो पहुंचा जा सकता है।
3: भाई वाह।
4: अब तुम अपनी यात्रा के बारे में भी तो बताओ।
3: मेरी यात्रा भी बड़ी अच्छी गुजरी।
4: अच्छा,
3: पूरे रास्ते में हरी भरी प्रकृति और साफ सुथरे शहर। और हाँ, मैंने भी रास्ते में चेरी ब्लॉसम के फूल देखे।
4: वाह,
3: हल्के गुलाबी और सफेद रंग के ये फूल बहुत सुंदर हैं। सुना है इन फूलों को हमारे देश की पहचान माना जाता है। बहुत अच्छा हुआ जो मैंने यात्रा करने का निर्णय लिया, वरना मैं तो वहीं खड्ड में पड़ा रह जाता।
4: ये तो है।
2: दोनों मेंढक एक दूसरे को अपनी यात्रा का हाल सुना रहे थे। अचानक ओसाका के मेंढक के मन में एक विचार आया। वो बोला,
3: मित्र, कितना अच्छा होता यदि हमारा आकार थोड़ा और बड़ा होता।
4: क्यों? आकार बड़ा होने से क्या होने वाला है?
3: आकार बड़ा होने से हमें इतनी यात्रा तो नहीं करनी होती।

0: कैसे?
1: अरे भाई, मैं समझाता हूँ। आकार बड़ा होता तो हम किसी भी पहाड़ पर चढ़कर देख लेते कि जहाँ हम जा रहे हैं वे शहर देखने लायक भी हैं या नहीं।
0: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो, पर इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हम अभी भी कर सकते हैं।
1: वो कैसे?
0: अरे वो ऐसे कि हम पास के पहाड़ पर चढ़कर एक दूसरे का सहारा लेते हुए अपने पिछले पांवों के सहारे खड़े हो जाए। हाँ, इससे हमारा आकार भी बड़ा हो जाएगा और फिर हम आसानी से उन शहरों को देख सकेंगे जहाँ हम जाना चाहते हैं।
1: भाई वाह!
2: दोनों मेंढक इतने उत्साहित हुए कि वे उछलते हुए पास के एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। दोनों बड़ी मेहनत के बाद एक पहाड़ के शिखर पर जा पहुंचे। लंबी और ऊंची चढ़ाई के कारण दोनों काफी थका हुआ महसूस कर रहे थे।
1: बड़ा ऊंचा पहाड़ है। पसीने आ गए, चारों टांगे दुख रही हैं।
0: ये तो है। अरे चढ़ते रहो, चढ़ते रहो।
3: बड़ी मुश्किल चढ़ाई थी। चलो पहुंचे तो सही।
0: वो तो है, लेकिन मित्र मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ, क्योंकि अब हम शिखर से उन शहरों को देख सकेंगे।
3: मैं क्योटो देखूंगा
0: और मैं ओसाका।
3: क्यों नहीं, चलो
0: चलो।
2: तो साथियों, हुआ ऐसा कि ओसाका के मेंढक ने उछलकर अपने अगले पैरों को क्योटो के मेंढक के कंधों पर रख दिया और क्योटो के मेंढक ने भी ऐसा ही किया। अब दोनों मेंढक अपने पिछले पैरों पर खड़े थे। उनके अगले पैर एक दूसरे के कंधों पर थे। दोनों ने गिरने के डर से एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था।
1: अरे अरे अरे अरे, ध्यान से।
0: चलो
1: संभल कर।
0: कहीं गिरना पड़े मित्र। ये ठीक है।
3: बचे।
2: यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन दोनों ने एक बात की ओर ध्यान नहीं दिया था कि उन्होंने अपनी पीठ उन्हीं शहरों की ओर कर रखी थी जिन्हें वे देखना चाहते थे। इस प्रकार ओसाका से आया हुआ मेंढक ओसाका को ही देख रहा था और क्योटो से आया हुआ मेंढक क्योटो को।
1: ये क्या, क्योटो तो बिल्कुल ओसाका की तरह दिखाई पड़ता है। अब तुम्हें क्या दिखता है मित्र?
0: क्या बताओ मित्र, मुझे भी ओसाका क्योटो की तरह ही दिखाई दे रहा है।
3: ये तो सचमुच बड़ा धोखा हुआ। मुझे लगता है यहाँ तक आकर मेरा समय ही नष्ट हुआ। मैं तो उसी खड्ड में ही ठीक था
0: और मैं उसी छोटे से तालाब में ही ठीक था। क्या लाभ हुआ इतनी यात्रा करने से, इतना कष्ट सहने से। चलो चलो यहाँ से।
1: हाँ चलो।
2: फिर क्या था, दोनों मेंढक अपने अपने घर वापस लौट गए। तो साथियों, अभी आपने सुनी ये जापानी लोक कथा, आशा है आपको पसंद आई होगी। अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा सोचिए, इन दो मेंढकों की यात्रा क्यों व्यर्थ हुई? किसी यात्रा से पहले हमें किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, इसकी एक सूची बनाइए। क्या आपके क्षेत्र में कोई ऐसी हास्य प्रधान लोक कथा है जिससे ये संदेश मिलता हो कि यदि कोई कार्य सोच समझकर नहीं किया जाए तो उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? जापान के क्योटो और ओसाका शहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए और पता लगाइए कि वे क्यों प्रसिद्ध हैं।
4: अभी आपने सुना कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम दो मेंढकों की यात्रा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर

प्रोफेसर भारती कौशिक, ध्वन्यांकन मोहम्मद फैजान खान, कलाकार मुइनुल हसन नियाजी, वैभव श्रीवास्तव और ममता मलकानी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आशा है श्रोताओं आपको हमारा ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: आइए अब चलते हैं एक और यात्रा में कार्यक्रम नमक के साथ।
2: इस कार्यक्रम में भारत पाक विभाजन के पश्चात एक स्त्री की यात्रा के बारे में बताया गया है। जब वो पाकिस्तान से भारत आती है, उसने महसूस किया कि बेशक दोनों देशों के बीच सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन लोगों के हृदयों में आज भी कोई सीमा रेखा नहीं है।
3: खुदा खैर करे राहिल, क्या नाजुक वक्त है
4: जी।
3: हिंदुस्तान पाकिस्तान ने नेकी, मोहब्बत और रहम दिली सब पर पहरा खड़ा कर दिया। अब देखना, कल मेरी दिल्ली की रवानगी है और दिल है कि कांपे जा रहा है।
4: अरे सफिया बाजी, दिल्ली लाहौर की दूरी ही कितनी है, यहाँ से 10 फलांग? आप तो बेवजह परेशान हो रही हैं।
3: अरे राहिल, इस 10 फलांग ने तो 2 मुल्कों की शक्ल इख्तियार कर ली है। दिल्ली और लाहौर तो उन लोगों से पूछो जिनकी आंखों के पानी में शहर झांकता नजर आता है।
4: बाजी आप तो अदीब ठहरी, आपसे भला कौन बहस कर सकता है। अरे बाजी, इस पुड़िया में क्या है?
3: नमक, लाहौरी नमक।
4: लाहौरी नमक, आप इसका क्या करेंगे?
3: देख राहिल, अपना पुलिसिया तेवर अपने पास ही रख। और इसमें इतनी हैरानी क्यों है? नमक ही तो ले जा रही हूँ। क्यों भाई, नमक नहीं ले जा सकते क्या?
4: नहीं ले जा सकते बाजी, गैर कानूनी है ये
3: है?
4: और वैसे भी नमक का आप करेंगे क्या? आप लोगों के हिस्से में तो हमसे बहुत ज्यादा नमक आया है।
3: मैं हिस्से बिखरे की बात नहीं कर रही हूँ, आया होगा। मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने यही मंगवाया है।
4: मेरी माँ? बाजी हमारी माँ बंटवारे से पहले ही अल्लाह को प्यारी हो गई है। और कौन सी माँ है जो हमारी है?
3: हमारी नहीं राहिल, मेरी माँ। दिल्ली में मुझे एक सिख बीबी मिली, वही छोटी छोटी चमकदार आंखें जिनमें नेकी, मोहब्बत और रहम दिली की रोशनी जगमगाया करती है, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह। हमारी अम्मी जैसा कद, अम्मी जैसा भारी भरकम जिस्म, सफेद मलमल का दुपट्टा ओढ़ा करती हैं वो, बिल्कुल हमारी अम्मी की तरह।
4: देखिए बाजी, बंटवारा हुए काफी अरसा बीत गया, अब तक तो वो वहां ठीक से

0: रच बस गई होंगी।
1: लेकिन लाहौर नहीं भूला उनसे राहिल, साटा लाहौर। जब मैं लाहौर तेरे यहाँ आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहें तो मुझे हुक्म दीजिए। तो मेरी माँ हिचकिचाकर मुझसे बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना।
0: देखिए बाजी, मोहब्बत, जज्बात, आत्मीयत, ये सारी बातें अपनी जगह हैं, लेकिन नमक, अरे बाजी आपको कस्टम से गुजरना है, और अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई ना तो आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, आप कानून तो जानती नहीं।
1: अरे निकल आने का क्या मतलब, मैं क्या चोरी से ले जाऊंगी, छिपा के लेकर जाऊंगी क्या? मैं तो दिखा के जता के लेकर जाऊंगी।
0: ओहो बाजी आप समझ नहीं रही हैं, कानून भी तो कोई चीज है।
1: फिर वही कानून कानून कहे जाते हो, क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत मुरव्वत इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले भी इंसान होते हैं, क्या एक तोहफा भी नहीं ले जाने देंगे मुझे?
0: ओफो, अब आपसे कौन बहस करे। वैसे मैं आपको बता देता हूँ बाजी, आप ले जा नहीं पाएंगी ये नमक, और बदनामी मुफ्त में हम सब की भी होगी, आखिर आप कस्टम वालों को जानती कितना है।
1: देख राहिल, कस्टम वालों को जानू या ना जानू, पर इंसानों को थोड़ा बहुत जरूर जानती हूँ। बुढ़िया को कहाँ रखूं? ऐसा करती हूँ कि इनू की टोकरी में नीचे दबा देती हूँ, कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कस्टम वाले तो खोज भी नहीं पाएंगे। नमक की पुड़िया मैंने छुपा तो दी, अगर कस्टम वालों ने खोज ली तो? नहीं नहीं, ऐसा करती हूँ मैं ये पुड़िया हाथ में ले लेती हूँ, मैं खुद ही बता देती हूँ उन्हें, ये ठीक रहेगा।
0: अच्छा बाजी, अब लाहौर कब आएंगे आप?
1: मालूम नहीं राहिल, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं।
0: अरे कहाँ जा रही हैं बाजी आप?
1: नमक का मोल पूछने।
2: आप आइए जनाब, आपसे कह रहा हूँ, इधर आइए। हाँ, ठीक है, लगता है यही कस्टम ऑफिसर है, इन्हीं से बात करती हूँ। सुनिए।
3: जी फरमाइए।
1: अब आप कहाँ के रहने वाले हैं?
3: मेरा वतन दिल्ली है, आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती, अपने अजीजों से मिलने आई होंगी।
1: जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ, अपने भाइयों से मिलने आई थी, वो लोग इधर ही आ गए हैं। आप?
3: जी जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली ही है।
1: अब जी ये थोड़ा सा लाहौरी नमक।
3: नमक? देखिए मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। हाँ, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, और जिन खातून के लिए आप ये नमक लेकर जा रही हैं उन्हें मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी तक उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा।
1: जी शुक्रिया।

0: चलो, खैरियत से दिल्ली तो पहुंच गई।
1: आप इधर आइए, इधर आइए।
2: मैं जनाब,
1: आप लीजिए जनाब, अपना सामान चेक कराइए।
2: लो जनाब, देख लो जनाब।

0: हो गया जनाब, जाएं।
1: हाँ ठीक है,
0: ठीक है जी, खुदा।
2: ए आप भी इधर आइए, आइए सामान।
3: साहब मैं एक गैर कानूनी चीज, ये देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा।
4: आप इधर आइए।
3: हाँ जी,
4: हमको पूरा बात समझ में आ गया। चाय खाबो?
3: हाँ?
4: माफ कीजिए, चाय पियेंगे क्या आप?
3: नहीं।
4: मैं आपको कमाल का चीज दिखाता हूँ। मेरे पास नजरुल इस्लाम और रविंद्रनाथ टैगोर की ये किताबें। जी हाँ, ये मेरे मित्र सुनील दास गुप्ता ने 1946 में तोहफे के तौर पर दिया था।
3: तो साहब क्या आप ईस्ट बंगाल के हैं?
4: हाँ, मेरा वतन ढाका है। जब डिवीजन हुआ तभी आए। मैं कोई 12-13 साल का था। ढाका में दोस्तों के साथ नजरुल इस्लाम को खूब मन से पढ़ता था। मेरा वतन ढाका है। और नमक, इसका वतन कौन सा? आपको राज का बात बताऊं? हम डाब आज भी अपने वतन ढाका का ही पीता है, किसी से कहना मत। वतन तो कस्टम वालों का होता है, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है, दिल में।
3: सही कहा साहब, इंसानों का वतन यहाँ दिल में है। मोहब्बत नमकीन भी तो होती है ना साहब। इन आंसुओं की तरह
4: नक्शे पर लकीर खींच देने से जमीन और लोग बट नहीं जाते।
3: ठीक कहते हो साहब।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम नमक, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी
0: कुसुमलता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार। उमंग।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दोपहर के 3 बजे हैं, हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

सामीन आपको बता दें, अब से कुछ ही देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम मेरी पसंद। दिन में 3:30 हम पेश करेंगे मारूफ अदाकार अशोक कुमार से की गई गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग। 4 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का। फिल्मी नगमों का प्रोग्राम जारी रहेगा शाम 4:50 तक। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और रोमानिया के दरमियान इकतसादी और सरमाकारी के ताल्लुकात में तोसी के लिए कहा है। उन्होंने बुखारेस्ट में भारत रोमानिया तिजारती फोरम से खिताब किया। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलकूद के मैदान में 3 माहिदों पर दस्तखत किए हैं। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में आवाम की आवाज को दबाए जाने को नजरअंदाज करने पर अकवाम

हम आपको सुनवाएंगे मनोज कुमार पर फिल्माए गए कुछ फिल्मी नगमे। आज उनका यौम पैदाइश है। मनोज कुमार 24 जुलाई 1937 को गैर मुनकसिम हिंदुस्तान के एबटाबाद इलाके में पैदा हुए। फिर तकसीम का सानहा आ गया जब वो 10 बरस के थे, दिल्ली शिफ्ट हो गया। यहीं से उन्होंने अपनी तालीम शुरू की और हिंदू कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वो दिलीप कुमार की फिल्में देखते थे और उनसे बहुत इंस्पायर थे, उनकी अदाकारी को बहुत पसंद करते थे। इसी बिना पर उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रख लिया। कहते हैं कि शबनम फिल्म जो 1949 में दिलीप कुमार साहब की आई थी, उसको देखकर वो इतना मुतासर हुए थे कि उन्होंने अपना नाम हरिकिशन गिरी गोस्वामी से बदलकर मनोज कुमार किया था। इब्तदा में मनोज कुमार को छोटे छोटे किरदार मिले, जैसे फैशन फिल्म में, सहारा में, चांद में, हनीमून में। उसके बाद फिर धीरे धीरे धीरे धीरे उनकी अदाकारी की जौहर डायरेक्टर्स पर खुलने लगी और इस तरह उन्हें फिर बड़े बड़े काम मिलने लगे। जब

मनोज कुमार की अदाकारी से सजी एक और फिल्म थी, वो कौन थी? वो फिल्म भी बहुत हिट रही और बहुत मकबूल रही, और उसके नगमे भी एक जमाने तक, उन नगमात ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री में धूम मचा दी थी।

0: सामिन इसलमी के साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। आज के प्रोग्राम खिराज अकीदत था अपने ज़माने के मारूफ अदाकार मनोज कुमार के लिए उर्दू सर्विस की जानिब से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है मारूफ अदाकार अशोक कुमार से की गई गुफ्तगू की एक रिकॉर्डिंग। आपसे गुफ्तगू की थी अमीर हनफी ने।
1: वो राज क्या है कि आपकी शख्सियत इतनी सदाबहार है और आपके साये से भी बुढ़ापा जो है वो बहुत दूर भागता है?
2: बुढ़ापा तो आता ही है, लेकिन शायद शरीर पर आपको अच्छे यहाँ पर पता नहीं लग रहा है, लेकिन शायद इसी से बच गया हो। और मैं ज्यादा रात कभी करता नहीं, ज्यादा फंक्शन भी अटेंड नहीं करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, अपने काम में रहता हूँ।
1: इसी के साथ ये भी कहना पड़ता है कि किसी भी दौर में आपकी फिल्मी जिंदगी के आप कभी भी पुराने नहीं लगे। आपकी एक्टिंग, आपके एक्सप्रेशंस, आपके बातचीत करने का ढंग, ये सारी चीजें 25 बरस पहले जो फिल्में आपकी थी और जो आपके साथी थे उनके बारे में आप क्या सोचते हैं?
2: अब एक्टिंग के बारे में पूछ रहे हैं। दरअसल मुझे आज 39 साल हो गए फिल्म में। यही कह सकता है एक्टिंग के बारे में कि मैंने हमेशा कहानी की तरफ लगन दिया। सोचता रहता हूँ क्या कर रहा हूँ, अभी भी बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से ऐसे सीन्स हैं जो कि मैं कर चुका हूँ, फिर भी रोज सोच लेता हूँ कि वो ठीक है कि नहीं, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ कि नहीं। मुमकिन है इसीलिए मैं रह गया हूँ, लेकिन मैं इसकी वजह नहीं बता सकता क्यों रह गया हूँ। मेरे से भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जो नहीं रहे, बहुत जल्दी निकल गए। इसकी वजह कोई ऊपर वाले जानता होगा, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता।
1: इसी के साथ ये भी बताइए कि आपका जो एक्टिंग है वो तो एक बजाते खुद एक स्कूल की हैसियत रखता है, तो आप यानी एक एक्टर के लिए किन खसूसियात को जरूरी करार देते हैं? तो आपका जो एक्टिंग स्कूल है, आप यू आर ए स्कूल इन
2: वो स्कूल जो है वो खुद ब खुद बन गया होगा। मैं अभी तक हर शॉट में मेहनत करता हूं, अगर उसको स्कूल बन गया है तो वो दर्शकों की जो देखते हैं, ऑडियंस की, उनकी मेहरबानी है, उनको पसंद आता है। कौन कब पसंद आता है ये भी नहीं कह सकता। दरअसल देखिए तो मैंने 200 तस्वीरें बना ली हैं, 200 से ऊपर हो गई हैं, लेकिन उसमें कम से कम 175 फ्लॉप्स होंगे।
1: नहीं बल्कि बात इसके बारे
2: क्या होता है कि मेरा रोल जो है ना, जहां तक हो सके मैं अच्छी तरह करता हूं, फिर बाकी रहते हैं जो स्टोरी हुआ या डायलॉग हुआ उसमें अदला बदली तो करते रहते हैं। अगर स्टोरी फ्लॉप हो जाती है तो लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा काम खराब नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टर ने खराब कर दिया, तो इस तरह से बच जाता हूँ। ये ऊपर वाले की मेहरबानी है।
1: जी, जो पहले फिल्में लोग देखते थे तो वो बैनर को देखकर कि ये न्यू थिएटर्स की है, प्रभात की है, बॉम्बे टॉकीज की है, मिनरवा की है, कुछ इस तरह। उसके बाद दौर आया कि डायरेक्टरों के नाम से देखी जाने लगी, फिर दौर आया कि अदाकारों के नामों से फिल्म देखी जाने लगी। तो ये जो तब्दीलियां हुई हैं हिंदुस्तानी फिल्म में, ये इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कि ये सेहतमंद है, मुनासिब हुई है या गलत हुई?
2: पहले कंपनी के नाम से पिक्चर चलती थी, इसलिए कि पहले कंपनियां पिक्चर बनाती थी
1: जी।
2: धीरे धीरे कंपनियों का हाल टूटने लगा, उसके बाद प्रोड्यूसर्स अलग निकल पड़े, तो प्रोड्यूसर के नाम से चलने लगी पिक्चरें। अब क्या है, हम लोगों के वक्त में हम लोगों को सीढ़ियां बनाने पड़ी, सब सीढ़ी बनाकर चढ़ने के लिए लोग तो जल्दी जल्दी चढ़ जाते हैं, पैसा भी बहुत मांगते। हम लोगों के वक्त में ऐसा था कि पैसा मिले या न मिले, काम खत्म करना उसको हम लोग ड्यूटी समझते थे। इसलिए पुराने लोगों में से बहुत से इसलिए रह गए हैं कि काम को ड्यूटी समझकर किया, यानी काम को खेल समझ कर नहीं। कि आजकल बहुत से नहीं, हाँ यहाँ अपने पाकिस्तान की बात तो मैं कह नहीं सकता, हिंदुस्तान में बहुत से हैं जो वक्त पर आते नहीं है, और आए अगर वक्त पर और काम नहीं हो तो कहते हैं भाई हमको इतनी जल्दी क्यों बुलाया। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि हमें पैसा मिलता है उसके लिए, सुबह से लेकर शाम तक बैठने के लिए पैसा मिलता है। ये पूछना ही गलत है कि आप हम पहले क्यों हमें बुला लिया।
1: आपके एक दोस्त थे जो उर्दू के बहुत बड़े अफसाना निगार थे, और उन्होंने एक किताब में फिल्म के बहुत सी पर्सनैलिटीज के कुछ स्केचेस भी लिखे हैं, बड़े दिलचस्प। गंजे फरिश्ते, मेरा मतलब सादत हसन मंटो से है, उनसे आपके ताल्लुकात कैसे थे? और
2: सादत हसन

0: मैं इतना कहूंगा कि मुझसे मैं उनको जितना प्यार करता था वो मुझे उतना ही प्यार करते थे। वजह यह है कि उसकी उनकी राइटिंग मुझे बहुत पसंद आती थी
1: जी।
0: मैं उस वक्त उर्दू पढ़ नहीं सकता था, अब तो पढ़ लेता हूँ।
1: अच्छा।
0: उन्होंने मुझे सिखाया उर्दू पढ़ना, पर्शियन भी थोड़ा थोड़ा सिखाया, लेकिन उस वो पढ़ पढ़ के स्टोरी जो सुना है तो मुझे बड़ा मजा आता था। तो मैंने उनको कहा कि भाई तुम मेरे साथ एक स्टोरी में काम करो, तो एक 8 दिन करके स्टोरी मैंने बनाई, और उन्होंने सब दूसरों को छोड़कर मेरे पास आ गए। ये क्या कि प्यार जरा बढ़ता गया, और उसके बाद वो मुझे थोड़ी सी संत किस्म के थे। एक फाइनल जब मैं बॉम्बे टॉकर्स में 1947 साल में बॉम्बे टॉकर्स में गया, तो मेलबोर्न में काम किया है, मेलबोर्न में लिखा
1: जी।
0: हाँ, 5-6 आदमी थे जो मैंने भी लिखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं दादा मुझे आपको एक स्टोरी देता हूँ देखिए। तो मैंने कहा कि क्या स्टोरी है, तो उन्होंने कहा मैं लिख के दूंगा। तो सीन बाय सीन, शॉर्ट बाय शॉर्ट लिख के उन्होंने एक बड़ी मोटी किताब मेरे सामने 1 महीने के बाद दी। तो मैंने वो किताब देखी, देखने के बाद जो कुछ खास पसंद नहीं आई मुझे। मैंने कहा मन तो जरा एक काम करो, ये दूसरा लिखो एक। तो बेचारे को आंसू आ गए उसके आंखों से। मैंने कहा आपको पसंद नहीं? मैंने कहा पसंद नहीं तो मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, पसंद नहीं आई मुझे। अच्छा करके वो चले गए, सामान अपने घर का 600 रुपए में बेच दिया, और दूसरे दिन पाकिस्तान चले गए, लाहौर चले गए। अब मैं उसको बुला रहा हूं, लेकिन वो शर्म का वाला, अब तो मुझे शर्म लगती है आपके सामने कि मैंने ये क्यों किया, इसीलिए नहीं आए वो। लेकिन हमेशा यहां से कोई जाए जो पाकिस्तान में, तो उनके जरिए उनको खबर मैं दे देता था अपनी, वो भी खबर अपनी दे दिया करे। आखिर मुझे ये मालूम हुआ कि शायद उनका दिमाग खराब हो गया था।
1: जी हाँ, कुछ ऐसी है।
0: तो वो थे संत की किस्म के, दिमाग खराब होना बड़ा ही पॉसिबल था उनके लिए।
1: अगर उन्होंने ये लिखा है कि आपकी जो इश्क एक्टिंग है उसके सिलसिले में, आप ही के जो स्केच में, कि अशोक कुमार जब पर्दे पर कोई इश्किया रोल करते हैं तो ऐसा मालूम होता है जैसे कैस्टर ऑयल पी
0: रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग छोटे एक छोटी सी जगह के रहने वाले खंडवे के, तो वहां पर जब मैं स्कूल में जाता था और शाम को घर आता था, तो हमारे पिताजी साथ ले जाते थे हमें, ताकि मैं कहीं मिलूं नहीं किसी से। वो जरा कैरेक्टर मॉरल के जरा पक्के थे, तो आदत सी रह गई है, तो लड़कियों से जरा थोड़ा सा घबराता, अभी भी घबराता हूं, लेकिन वो घबराहट हमारे पिताजी ने पैदा कर दी, तो उसके लिए मैं वालिद साहब को शुक्रिया दूं, या ना तो वो आप लोग किसी जाने।
1: तो अब अगर आपको इश्क में रोल दिया जाए इस उम्र में, तो आपको कैसा लगेगा?
0: मेरा ख्याल छुटपन से तो बेहतर कर लूंगा।
1: आपने कहीं कई तरह के हीरो का रोल किया है, हीरो के अलावा भी बहुत मेजर रोल्स और कैरेक्टर रोल्स आपने किए हैं, तो आपको खासतौर से हीरो की आपकी डेफिनेशन क्या है? यानी हीरो
0: कैसा? हीरो का तो मतलब ये है जिसके ऊपर रोल लिखा गया हो, जिसको हीरो कहते हैं। दरअसल ये फन वर्ड है हीरो
1: जी।
0: अच्छा, हम लोग के यहाँ हीरो उसको कहते हैं जो इश्क करता है हीरोइन से, उसको हीरो कहते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिसके ऊपर कहानी लिखी गई हो उसी वही कैरेक्टर है, वही हीरो है। जैसे मेरा आशीर्वाद, मैं आशीर्वाद तो देखा नहीं होगा आपने, हाँ, तो उसमें तो कहा था कि हीरो का रोल बहुत छोटा था, हीरो का रोल दरअसल मेरा ही था। जैसे ये पिक्चर अनुराग, उसमें भी हीरो का काम मेरा ही है
1: जी।
0: लेकिन मुझे ये बात अच्छी लगती है कि हीरो के काम में सिवाय इश्क और कुछ खास नहीं रहता। इसमें ऐसे रोलों में जो एक्टिंग करने का मौका मिलता है, कुछ दिखाने का मौका मिलता है, उसमें कुछ खास मिलता नहीं, दौड़ा दौड़ी और बड़े स्वीट मीठे मीठे बातें करना मिलता है और कुछ नहीं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें फर्क यही है
1: जी। हाँ, आपने यानी इतनी तरह के रोल किए हैं कि जैसे मालिक में आपने साधु का रोल किया था, और मेरी सूरत तेरी आंखें में जो आपने रोल किया था बदसूरत गवैये का, उससे मुझे ये ख्याल आता है कि हिंदुस्तानी फिल्म साज ये बात कब सीखेंगे कि हीरो बदसूरत भी हो सकता है, या उसके लिए बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी प्रोजेक्ट करना स्क्रीन पे ये जरूरी नहीं
0: है। अभी ठीक है, क्या है अभी हमारी इंडस्ट्री इतनी पुरानी नहीं हुई जहां पर ऑडियंस इतनी समझ ले कि हीरो किसे कहते हैं, अभी तक समझ में नहीं आया हमको। वो समझते हीरो का मतलब यही है, लेकिन कैरेक्टर एक्टिंग जो है ये अमेरिका में जिस तरह से होता है यहां भी होगा, लेकिन 10-20 बरस के अंदर होने वाला, हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो जरूर इस बात को समझ जाएगी जो आप इसे कह रहे हैं
1: जी। अच्छा सर, जो यानी हीरो के खिलाफ जो आदमी होता है या हीरोइन और हीरो के दरमियान में जो ट्रेंगल फॉर्म करता है, वो हिंदुस्तानी फिल्मों का के जो रिवायती ट्रेंगल है उसमें एक

0: आधा आधे नींद में कर लेता हूँ। अब क्या कि डायलॉग तो क्या है कि जितने डायलॉग मैंने बोले हैं कि कहीं वालिद को दादाजी बोला, कहीं पिताजी बोला, यही बोला, बाकी सेंटेंसेस तो वही बोले मैंने, तो डायलॉग में तो फर्क हुआ ही नहीं है जी। मैं जा रहा हूँ और मैं चला, यही सब होता रहता है, बाकी कोई फर्क नहीं हुआ। लेकिन किसी किसी पिक्चर करने मुझे मजा आया, किसी में नहीं आया। जो मजा है वो चला, ये तबाह से मैंने देखा है, इसलिए मैं कहता हूँ मुझे मजा आना चाहिए।
1: अभी ये जो आपने खासतौर से हुमायूं, नजमा, पाकिजा, बहू बेगम में जिस किस्म के रोल्स और जिस किस्म के माहौल को पेश किया है, उसके बारे में
0: मैं समझता हूँ कि मुस्लिम कल्चर में एक जो रेपुटेशन है कल्चर की, वो अभी तक फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमें नया लगता है हमेशा कि हम लोगों के यहाँ ऐसे हिंदू कल्चर में वो बात नहीं है। बहुत ही आसान हो गया है, किसी को नमस्कार किया, आधा बज के नहीं किया, नहीं किया, बैठ गए। यहाँ तो आपसे बात होती है, तो एक जरा कुछ अजीब सा लगता है, अच्छा लगता मुझे, तो इसलिए मैं ये मुस्लिम जोड़ करने मुझे मजा आता है
1: जी जी।
0: हाँ, हमेशा मजा आता मुझे, और एक नयापन लगता मुझे, तो मुस्लिम झट से ले लेता हूँ। कोई ऐसा रोल मिले, जैसे ये इसने महबूब किसने बनाया था, वो अपने मेरे महबूब
1: जी,
0: हाँ, बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत मजा आया।
1: ऐसे रोल करने के लिए आप स्पेशली उस कल्चर की और जिस किस्म की जिंदगी उस फिल्म में दिखाई जा रही है उसको बाकायदा स्टडी करते होंगे?
0: देखिए, मुस्लिम कल्चर की स्टडी तो नहीं किया, लेकिन इतने लोग दोस्तों के साथ रहा हूँ कि इसमें कोई खास मुझे तकलीफ नहीं समझने में। फिर भी सेट के ऊपर एक रहता है जो कि बता देता है ये गलत होगा, ये जैसे एक कुछ वर्ड्स है ना कि या अल्लाह, मैंने कह के बोले कि नहीं भाई, ये लड़कियां बोलती, मैंने कहा ये तो नहीं मालूम मुझे, खुदा बोली आप, मैंने कहा अच्छा भाई खुदा बोलते हैं। ये सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं जब मैं बंगाली हूँ। अभी काकी का गड़बड़ तो अभी भी होता है, अभी देखिए मैं बोल रहा हूँ इसमें कितनी गलतियां होंगी काकी में, वो आप देख लेंगे जब सुनेंगे इसको बाद में। तो ये तो इसके लिए किसी को रहना जरूरी, चाहे वो एक्सपर्ट ही क्यों ना हो, एक आदमी रहना चाहिए जो कि जान देखेगा कि ये ठीक कर रहा है, ये गलत कर रहा है, हमेशा सब चीजों में
1: जी। अगर आदमी अब आपके साथ जिन हीरोइनों ने पार्ट किया है, ये जो फीमेल रोल्स रहे हैं, उनमें से आपको कौन कौन, यानी एक एक्टर की हैसियत से, एक फनकार की हैसियत से मुतमईन कर सकें?
0: देखिए, दरअसल बात यह है कि मैंने इस काम को, ये कौन काम कर रहा है, कौन मेरे सामने है पीछे, इसकी मैंने अभी तक सीरियसली कोई सोचा नहीं है। जिन जिनने काम किया, किसी किसी के कुछ स्पेशलिटीज हैं, जैसे मीना कुमारी के साथ बहुत से पिक्चर किए मैंने, देवी रानी के साथ बहुत से पिक्चर किए, देवी रानी से पिक्चर कर रहा था तो उस वक्त मैं खुद ही समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ, धीरे धीरे समझ आने लगी। लेकिन मीना कुमारी से जब पिक्चर किए मैंने, तो उस वक्त दोनों में ऐसे अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि डायलॉग हम लोगों को पढ़ना या याद नहीं करना पड़ता था, हमने कुछ भी बोला उसका कुछ भी जवाब दे देती। ऐसे महमूद के साथ मेरा होता है, हम अभी जो पिक्चर्स करते हैं उसके साथ, तो महमूद को बचपन से ही मैंने देखा उसको, तो पिक्चर करते हैं तो कोई डायलॉग फिक्स नहीं होता, जब दो फूल देखेंगे सब बना के डायलॉग सेट ऊपर हुआ। तो इस बात की मैंने कभी सीरियस चिंता नहीं की कि भाई कौन काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। अपना काम मैंने देखा, दूसरा काम बिगड़े नहीं, ये देखा कि मेरी वजह से उसका काम बिगड़े नहीं, ये भी देखा है। बाकी सब में कुछ कुछ गुण तो है सब में, ये मैं आज, और दूसरी बात है, अभी तक मैं अपने सीरियस नहीं उसका, मैं वो उदाहरण देता हूँ कि मैं, मेरे पास एक तस्वीर नहीं है जो मैंने 1934 से काम करके आज तक एक तस्वीर नहीं है, मेरे पास कोई बुकलेट नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड्स नहीं है, कुछ नहीं। तो मैंने सोचा कि कब तक काम करेंगे, हमेशा सोचता था कि 5 साल 6 साल के बाद तो खत्म ही हो जाते हैं सब, तो 5-6 साल के बाद मैं कोई पान की दुकान या कपड़े की दुकान खोल लूंगा। तो 5 साल निकल गए, फिर समझा कि अब दूसरे 5 साल में क्या सोचना चाहिए, अब बड़ी दुकान कुछ करें, कुछ पैसे आ गए, तो तीसरा 5 साल भी निकल गया, चौथा 5 साल, 7-5 साल निकल गए। तो इसलिए वो सोचने का मौका कभी मिला नहीं कि क्या करना चाहिए मुझे।
1: फिर भी आपने जिन जिन हीरोइंस के साथ काम किया है उनमें से कुछ, किसी के तो कुछ नकूस आपके जहन में होंगे?
0: सबके कुछ तो है, क्या मैं मतलब
1: यानी किन किन, यानी ये समझिए जब तो शुरू किया था, आपकी पहली हीरोइन कौन थी? मतलब
0: पहली हीरोइन थी देविका रानी,
1: अच्छा,
0: फिर थी लीला चिटनिस, फिर मुमताज शांति, फिर अभी याद भी नहीं है कि कौन कौन थे, आए और गए, आए और गए, अभी इसमें से इनमें से तो कोई है ही नहीं। मीना कुमारी भी गई, फिर निरूपा आए हैं, अभी अभी अभी कर रही है, अभी मैं भी काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे को तो मैं बीमार था इसलिए, और कौन है मेरे साथ, तू वही रहमान के साथ थोड़ा सा हुआ, अच्छे आर्टिस्ट सब। मैं ये कह नहीं सकता कि कौन किससे बेहतर है, किसी का कुछ अच्छा है, किसी का कुछ अच्छा है
1: जी। हाँ, अरे जिन अदाकारों के साथ आपने काम किया है उनके

0: जैसे मैंने तो सबके साथ ही काम किया है।
1: जी, मेरा मतलब है पाकिस्तान में जो अब है।
0: हाँ पाकिस्तान में अभी वहां की उनकी खबर तो आती नहीं मुझे। अब मैं जैसे बोल रहा था कि एम नजीर, वो मेरे साथ 1936 से काम कर रहे थे, बड़ी दोस्ती हो गई थी, स्टोरी भी लिखते थे, कहानियां भी लिखते थे छोटे छोटे उर्दू पेपर्स में। तो मैंने उनको बोला, एक कहानी उन्होंने सुनाई, मैंने उनको बुलाया और मजबूर बनी। वो चली खूब, उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान का कुछ झगड़े चल रहा था 1947 में, लोगों ने बड़ी धमकियां दी। मैंने कहा भाई हम आर्टिस्ट हैं, हमारे लिए पॉलिटिक्स कुछ नहीं है, आप मुसलमान हैं हिंदू हैं, हमारे लिए आर्टिस्ट हैं, तो हम ये अच्छा। लेकिन लोगों ने बड़ी धमकी दी थी। मैंने कहा कि तुम दूसरी स्टोरी फिर सुना, दूसरी स्टोरी उन्होंने सुनाई वो अच्छी लगी, अब वो कहां पता नहीं। कुमार भी उनके साथ भी काम किया, किसी का पता नहीं। एक हसरत लखनवी थे, वो क्या कर रहे हैं पता नहीं। शाहनवाज कहां है वो भी क्या कर रहे हैं पता नहीं। एक दफा आए थे शाहनवाज, बड़ी खुशी हुई थी मिलकर, लेकिन उम्र हो गई उनकी, 70 साल की हो गई होगी, ज्यादा हो गई होगी, क्या कर रहे हैं उनको दिखता नहीं। बोले मैंने दिखता नहीं, बोले मेरी भी हालत होने वाली ऐसी, मुझे भी अब कम दिखने लगी है। नूरजहां के साथ मैंने काम नहीं किया, इत्तेफाक नहीं हुआ, उनका गाने बहुत पसंद आते थे मुझे। अब मुझे मेहंदी हसन गाने बड़े पसंद आते हैं, अगर कहीं मेहंदी हसन के गाने मिल जाए मुझे, या उधर कभी अगर हिंदुस्तान में आ जाए, तो मैं तो भाई उनको जरूर बुलाकर उनके गाने सुनूंगा।
1: दादा मुझे फिल्मों के अलावा आपकी दिलचस्पियां और किन किन चीजों में?
0: मैंने कुछ दिन तक एस्ट्रोलॉजी सीखी, होम्योपैथी भी सीखी, पेंटिंग भी सीखी, चेस भी खेलता रहा। ये अपने आप को मैं जरा अलग ले जाने के लिए करता हूँ, किसी चीज में थक जाता हूँ तो दूसरी चीज में चला जाता हूँ। अभी आजकल टेप रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो गाने वालों को बुला के तबला वाला के साथ कभी मौका तो सुनिए। वाकई बहुत ऐसी चीजें हैं जो कि आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा।
1: अच्छा, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए?
0: एक्सपेरिमेंट किए।
1: अच्छा, किस किस्म के?
0: जैसे एक रिकॉर्ड में से, अपने गांवों रिकॉर्ड में से साउंड और म्यूजिक अलग किया।
1: अच्छा।
0: हाँ, ये जो मुश्किल बात है, मेरे को कई दफे बदल बदल के बदल वाले करना पड़ा, म्यूजिक कम करके ये करके बढ़ा के करना पड़ा, तो बदल के किए हैं।
1: मोहम्मद
0: रफी, मोहम्मद रफी तो उनके गाने पर किया था, उनको मैंने सुनाया था, मैंने कहा देखो भाई तुम्हारा गाना रिकॉर्ड है, और फिर साउंड इधर से दिया, म्यूजिक इधर से दिया, तो किया था मैंने ऐसा।
1: अच्छा, तो सिर्फ आप गाने रिकॉर्ड करते हैं या साउंड्स वगैरह?
0: साउंड भी लिया है, साउंड भी लिया है। परकशनिस्ट बहुत से हिंदुस्तान में यहाँ जो बड़े अच्छे, जो मृदंग बजाने वाले, उनका भी लिया, बहुत से लोगों को लिया।
1: नरमणि, आपकी एक्टिंग देख, पर्दे पर ही देखकर आपके लोगों की तबीयतें जो है वो ठीक हो जाती हैं, फिर ये होम्योपैथी का शौक आपने किस लिए?
0: होम्योपैथी का क्या हुआ था कि मेरी बीवी बीमार हो गई थी, तो बहुत दिनों तक एलोपैथी इलाज कराया, वो अच्छी नहीं हुई। फिर एक लंदन से एक डॉक्टर आए थे, वो एलोपैथ हैं लेकिन होम्योपैथी करते हैं, उन्होंने कहा कि मैं ठीक कर देता हूँ। तो मैंने कहा क्या ठीक करेंगे आप, 1953 की बात है ये
1: जी।
0: उसके बाद उनने पता नहीं क्या दवाइयां दी, फिर 2 महीने के अंदर वो फुल यानी 86 पाउंड से 120 पाउंड हो गए, बिल्कुल ठीक हो गई। तो मैंने कहा ये मुझे सिखाई है, तो उन्होंने कहा ये सीखना तो आसान नहीं है, पहले आपको फिजियोलॉजी एनाटॉमी देखना पड़ेगा। मैंने कहा किताब लाइए, वो किताब जाके ले आया, वो 1 साल का कोर्स है, मैंने 10 दिन में खत्म किया, चुपके चुपके रात रात पढ़ के। फिर उनको कहा डॉक्टर को कि आप मुझे एग्जामिन कर लीजिए जरा, तो हंसने लगा कि तुम्हें अभी से एग्जामिन करो, एग्जामिन के सारे सवाल जवाब दिया उसने, तब उसने मुझे बताना शुरू किया, अभी भी मैं लिखता रहता हूँ उसको।
1: दादाजी, क्या आप ये सोचते हैं कि एक्टिंग सिखाई भी जा सकती है? मसलन जो फिल्म इंस्टीट्यूट खुली है और उससे जो लोग अब फिल्मी दुनिया में आ रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस के बारे में और उनकी ट्रेनिंग जो हुई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं?
0: ट्रेनिंग तो जरूर चाहिए, चाहे आप बॉर्न एक्टर हों, पर ट्रेनिंग जरूर चाहिए। ये तो पुरानी बात है कि आर्ट, स्टूडेंट ऑफ आर्ट इज ऑलवेज अ स्टूडेंट, वो तो सीखना ही पड़ता है। ये बात है कि अगर उसमें कोई इंटरनल क्वालिटीज नहीं हो तो कोई फायदा नहीं, सीख के भी कोई फायदा नहीं। पर ये जरूरी नहीं कि उसके लिए स्कूलिंग होना चाहिए, खुद ब खुद हम लोगों ने खुद ब खुद स्कूलिंग किया। मैं लेबोरेटरी में काम करता था, उस वक्त मैं देखता था जब मेरी तस्वीर पुरानी तस्वीरें हैं, तो मेरे को लगता था कुछ उल्लूपना है इसमें, समझ में नहीं आता क्या बात है। वाकई ये सोच रहा था कि मैं क्या गड़बड़ गया इसमें, समझ में नहीं आया, कोई बताने वाला नहीं था। यहाँ कोई बता देता ना तो जल्दी हो जाता, इंस्टीट्यूट में ये होता कि बता देते भाई ये तुम्हारी गलतियां हैं। मुझे कम से कम गलतियां सुधारने को 10 बरस लग गए। एक दिन याद आ रहा है ये करना चाहिए था, मुझे ये क्यों नहीं कर रहा, और उस दिन से मैं सुधरने लगा। तो इंस्टीट्यूट में एक बड़ी अच्छी बात है कि ये जो 10 बरस है वो 1 महीने में कर देंगे, लेकिन सीखना बहुत ही जरूरी है
1: जी,
0: सीखना बहुत ही जरूरी है।
1: जो लोग वहां से सीख कर आए हैं इंडस्ट्री में, उनका परफॉर्मेंस तो आप देखते होंगे?
0: वो तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा ही है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये मॉडर्न जनरेशन का परफॉर्मेंस ही अच्छा है। मॉडर्न जनरेशन जो बच्चे आए हैं काफी हमसे ज्यादा होशियार। मैं अभी भी जिट को देखता हूं तो मुझे याद आता है ये जिट चल कैसा रहा है।

0: चलो क्या कर रहा है, पुराने हमारे टाइम में था ही नहीं, प्लेन जेट कुछ था ही नहीं, लेकिन अभी के बच्चे तो कहते कि आप क्या देख रहे हैं, मैं तो जेट देख रहा हूँ, कैसा रहा इतना भारी, तो उसमें क्या बात है, कोई बात नहीं, तो वो देखे हुए हैं, हमको कुछ नहीं है, नई बात नहीं है, इसलिए अभी की जनरेशन ही होशियार है।
1: एक सवाल मैं आपके उस दौर के बारे में करना चाहता हूँ जब आप फिल्मों में खुद, यानी उस वक्त सभी एक्टर्स जो थे वो अपने गाने खुद गाते थे जिनको भी गवाया जाता था, तो क्या आपने म्यूजिक की बाकायदा कुछ तालीम हासिल की?
0: म्यूजिक की तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन मेरे फैमिली में म्यूजिशियंस हैं, क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं
1: जी,
0: हमारे मामा जो हैं, हमारी माँ, हमारी बहन जो मिस्टर मुखर्जी, इन लोगों ने क्लासिक म्यूजिक सीखी है, तो वो सुनता था, मैं गाने का मुझे शौक होता नहीं, लेकिन जब पिक्चर में आना भी कोई शौक नहीं, इत्तफाक हो गया मेरा, तो मैं आया तो मुझे कहा गाओ, तो गाते बने नहीं, लेकिन सीखते सीखते जब सीखने लगा, जब करीब करीब लाइन पर आने लगा, तब तक अच्छे गाने वाले आ गए, तो अच्छा गाना छोड़ के बुरा गाना कौन सुनेगा, इतना अच्छा गाता नहीं, लेकिन गा लेता था बस, और कोई बात नहीं है।
1: अच्छा, धर्मगुरु के आशीर्वाद में आपने हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की जो दो नज़में बच्चों के लिए वो जो सुनाई हैं, लेकिन आपने जिस तरह रिसाइट किया है वो भी एक यादगार चीज है।
0: मैंने रेलवे रेल के टाइमिंग के साथ किया है, झक झक झक झक झक इस तरह से किया, उनने किया था दही बेचने वाले की तरफ से, इसलिए अच्छा जो कुछ भी हो तस्वीर में जो चीज देखी जाती है उसमें लोगों का ध्यान ज्यादा होता है, जो वो करते हैं स्टेज पर बहुत ही अच्छा करते हैं
1: जी जी,
0: और मैंने किया काफी उनका कॉपी किया, लेकिन मैंने ट्रेन कदम पर दिया था, वो आपने सुना था वो
1: जी,
0: नए नगर में बजता एक नए किस्म का बाजा, अब तो राजा गधा बन गया और गधा बन गया राजा, ये मैं बोला नहीं था वहां, क्योंकि उस वक्त बड़ी गड़बड़ चल रही थी, नसीब अपना टूटा फूटा, नसीब अपना खोटा, और जमींदार साहब का कुत्ता देखो कितना ताजा मोटा, ये जो चीज मैं डाला नहीं था, गड़बड़ चल रही थी
1: जी जी,
0: लेकिन लोगों को अच्छा लगा, मैं ये क्रेडिट अपने ऊपर ले नहीं सकता, ये धर्मराज चट्टोपाध्याय क्रेडिट, अगर बुरा लगता तो मैं गाली भी नहीं को देता।
2: सावन भी आप सुन रहे थे मारूफ अदाकार अशोक कुमार के साथ की गई गुफ्तगु की एक रिकॉर्डिंग, आपसे मैं भी गुफ्तगु थी अमीर खान अफी, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश खिदमत है फिल्मी नगमे, फिल्मी नगमों के प्रोग्राम में आज हम आपको सुनवाएंगे मनोज कुमार पर फिल्माए कुछ फिल्मी गीत, प्रोग्राम की पहली पेशकश दो बदन फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी की आवाज़ में, मौसीकार हैं रवि,

0: जिंदा दफनाया जाएगा, मेरा चना है अपनी मर्जी का,
1: मर्जी का वही मर्जी का,
0: ये दुश्मन है खुद गर्दी का,
1: मर्जी का खुद गर्दी का,
0: मेरा चना है अपनी मर्जी का,
1: मर्जी का वही मर्जी का,
0: ये दुश्मन है खुद गर्दी का,
1: मर्जी का खुद गर्दी का।
2: क्रांति फिल्म के नगमा आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, नितिन मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। बोल संतोष आनंद की थी, मौसीकार थी लक्ष्मी कांत प्यारेलाल। और सामने लीजिए, जब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश को, फिल्म है सन्यासी, मौसीकार हैं शंकर जयकिशन।

हम जाए मंदिर में, पाप है तेरे अंदर में, धर्म छोड़ कर धन छोड़ कर।

शोर फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और साथियों की आवाजों में, जिसे मौसीकी सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब सुनिए एक और फिल्म का नगमा जिसपे मनोज कुमार की अदाकारी उरूज पर थी, वो फिल्म थी शहीद।

डॉक्टर विद्या फिल्म का नाम आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाया था एस डी बर्मन ने। और प्रोग्राम की अगली पेशकश आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे मौसीकी सजाया कल्याण जी आनंद जी ने, आवाज़ें मोहम्मद रफी, उषा टिमोती और साथियों की। फिल्म है हिमालय की गोद में।

0: नीलकमल फिल्म के नगमा आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में, नगमा निकालते शायर मौसीकार रवि। और समझ लीजिए अब सुनिए सावन की घटा फिल्म का ये नगमा, नगमा निगार एस एच बिहारी, मौसीकार ओपी नैयर।
1: जुल्फों को

0: प्रदेश में दौलत मुश्तका खेलों का शानदार और रंगारंग इफ्तिताही तकरीब के साथ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आगाज हो गया। किंग चार्ल्स स्वयं ने क्वीन कैमिला, बरतानिया के वजीर आजम एंडी बुरहम और दौलत मुश्तका खेल मुकाबलों के साथ डोनाल्ड रुकारे की मौजूदगी में ओवीओ हाइड्रो में कल शाम इन खेलों का आगाज का ऐलान किया। इन 10 रोजा खेल मुकाबलों में 74 मुल्कों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारत की परचम बरदार मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारतीय दस्ते की कयादत करते हुए भारतीय तिरंगा लहराते हुए ओवीओ हाइड्रो एरेना में दाखिल हुई। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में शिरकत करने वाले भारतीय दस्ते के लिए नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने एतमाद जाहिर किया कि भारतीय एथलीट्स जोशो खरोश, अजम मुसम्मम और बेहतरीन कारकर्दगी के जज्बे के साथ इन मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। वजीर अजम ने कहा कि मुल्क के एथलीट्स की सलाहियत, काबिलियत और लगन से बेशुमार भारतीयों को तरगीब फराहम होगी। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भारत और रोमानिया के दरमियान इक्तिसादी और सरमायाकारी के ताल्लुकात में तौसी के लिए कहा है। उन्होंने बुखारेस्ट में भारत रोमानिया तजारती फोरम से खिताब किया। भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम और खेलकूद के मैदान में 3 माहदों पर दस्तखत किए हैं। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा कश्मीर में आवाम की आवाज को दबाए जाने को नजरअंदाज करने पर अकवाम मुत्तहिदा की नुक्ताचीनी की है। उसने पाकिस्तान पर अवाम के हकूक मुनज़म तौर पर कुचलने का इल्ज़ाम आयद किया है। और अमरीका ने बहर अहमर में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर हौसियों के हमले के बाद ईरान पर लगातार 13वीं रात हमले किए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में भी 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर होती है। शब में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।
2: प्रोग्राम लेंगे आकाशवाणी उर्दू सर्विस का नाम medium wave trigger ni shibina fikla hertz medium wave sto chuna apkena ni shibina fikla hertz tuna fm channel ge share chik megahertz ka du akashwani kar ke lin was tu tu to gana minar chik san su kasta program ni za dua ya program sada qatala di program ni dakhse ke ngan mazat sama qurani tilawat na tarjuma wala mulkan bin qadi shakir qasmi
3: بسم الله الرحمن الرحيم
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

0: वहां उनके लिए मेवे और जो चाहेंगे मौजूद होगा।
1: सलाम कौलन मिन रब रहीम,
0: परवरदिगार मेहरबान की तरफ से सलाम कहा जाएगा। और गुनाहगारों, तुम आज अलग हो जाओ।

आज हम उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और जो कुछ ये करते रहे थे उनके हाथ हमसे बयान कर देंगे और उनके पांव उसकी गवाही देंगे।

0: دارین ترانسپورت گن و خبر الله گن چیت بین میدیم وی ترکیه نوشی بینه بیکلو هرتز میدیم وی استون چند رب گن نوشی بینه بیکلو هرتز دو نایف هم چنل رگای شهری چیک میکارد سکه دیو آکاشوانی کارگلین مسبوط است و دکان میاد سوم چیزون سکستا برنامه این مدت در دلخسی هگو
1: कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. अगर हम पहले से ही सतर्क रहें तो बहुत सारी जो अनहोनी होती है वो नहीं घटेगी, उसकी घटने की संभावना कम हो जाती है. जब बात करते हैं हम हृदय की, तो हृदय भी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण वाइटल अंग है और इसको स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरह से ये पंप की तरह काम करता है. और नख से शिख तक, माने हर एक कोशिका तक अगर कोई रक्त पहुंचा रहा है तो हमारा हृदय है. तो इस पंप को सुदृढ़ रखें, इस विषय पर हमारे साथ के विशेषज्ञ हैं डॉक्टर स्वाति शर्मा जी. बहुत बहुत स्वागत है आपका.
2: नमस्ते.
1: ये बताइए हृदय को हम कैसे स्वस्थ रख सकते हैं?
2: हृदय को स्वस्थ रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही है जो हमारे पूरे शरीर में खून पहुंचा रहा है ताकि हमें ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व मिल सके. हृदय की बीमारियों से बचने के लिए कुछ तरीके अपनाने होंगे, जैसे कि हेल्दी लाइफ और एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करना होगा, जिसमें आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस आती हैं, योगा आता है और जॉगिंग या ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब सामान्य से थोड़ा तेज चले, 30 मिनट प्रतिदिन कम से कम जॉगिंग जरूर करें और हफ्ते में 5 दिन जरूर व्यायाम को अपने जीवन शैली में
1: अपनाएं. पर अभी देखा जा रहा है कि जिम लोग कर रहे हैं, बहुत दिनों से जिम कर रहे हैं, बहुत स्वस्थ लग रहे हैं.
2: जी, बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस जिन्हें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस बोलते हैं, जिसमें मांसपेशी का आकार बदल जाता है और वो ज्यादा मोटी हो जाती है
1: जी.
2: तो ऐसा लगता है कि इंसान बहुत हेल्दी है.
1: हाँ.
2: परंतु यह एक्सरसाइजेस जिसमें वेट उठा के मांसपेशियों को मोटा किया जाता है, उससे हार्ट पे बहुत प्रेशर पड़ता है
1: जी.
2: ऐसी एक्सरसाइजेस अक्सर हार्ट की डिसीजेस, मतलब जिनको हृदय की बीमारियां पहले से हैं, उनको मना किया जाता है.
1: अच्छा, आप तो मेडिकल कॉलेज में हैं और बहुत सारे पेशेंट्स को देखती हैं, अलग अलग तरीके के आते हैं. हृदय जो है वीक हो रहा है, या जो हृदय है वो हमारा कमजोर हो गया है, वैसे नहीं पता चलता जैसे कि आपने अभी उत्तर में ही कहा है, तो कैसे पता चलेगा? क्या डायग्नोस्टिक की टेक्निक है, या कोई खून उन निकाल के कुछ ऐसा हो सकता है जिससे पता चल सके, या ECG या जो भी डायग्नोस्टिक्स की?
2: जी जी, सबसे पहली चीज तो सिम्टम्स होते हैं, मतलब कि जो इंसान है उसको किस तरीके की परेशानियां हो रही हैं, जैसे सांस फूल रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, कोई चलने पर या कोई भारी काम करने पर दिल में दबाव बनने के चलते सीने में दर्द होगा.
1: हाँ.
2: या सांस फूलेगा, तो ये सब साइंस हैं कि हम सोचें कि इसको हृदय की परेशानी डेवलप हो रही है, बन रही है.
1: अब खान पान पर आ जाते हैं. खान पान बहुत जरूरी है. आजकल हम बहुत फैटी चीजें खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट कर रहे हैं. कोई समोसा खा रहा है, कोई पिज्जा खा रहा है, तो इस तरह का जो फास्ट फूड है वो हमारी लाइफ स्टाइल का एक पार्ट हो गया है
2: जी.
1: उससे कैसे निकले और खान पान में क्या हम तब्दीली करें, मॉडिफिकेशन करें, कि हमारा जो हृदय है वो खान पान से ही ठीक हो जाए और खान पान एक तरह से दवाई के रूप में काम करे?
2: जी, हमें इसमें हेल्दी डाइट को अपनी जीवन शैली में शामिल करना होगा. यह जानकारी लोगों को होती है, बट काम के चलते हुए, स्ट्रेस के चलते, वो अपना खाने पे भागदौड़ के चलते, आजकल की जो एक जीवन शैली बन गई है जिसमें परफॉर्मेंस को देखा जाता है, उसके चलते लोग अपने खाने पीने पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और कम समय होने के कारण बाहर का खाना जो कि तला हुआ होता है ज्यादातर टाइम, और फास्ट फूड, डब्बा बंद चीजें, इनको खाने लगते हैं और इनसे पेट भर लेते हैं जो कि कैलोरी रिच होती है.

0: बहुत ज्यादा इनमें सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट की मात्रा भी ज्यादा देखी जाती है। तो इसमें हमें अपने दिन का कुछ समय हमें सोचना होगा कि हम खाना क्या खाते हैं पूरे दिन और उसको हम कैसे सुधार सकते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लेने होंगे, क्योंकि यह सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर हम लंबे समय के रिजल्ट को देखें, तो जो हम खा रहे हैं उसका रिजल्ट हमें अगर लंबा चाहिए या कि अगर हमें लॉन्ग हेल्दी लाइफ चाहिए, तो इस पे हमें ध्यान देना होगा। तो जितना फ्रेश फ्रूट्स, सलाद का मात्रा बढ़ानी होगी, तली भुनी चीजें कम से कम इस्तेमाल करनी होगी, इसके अलावा पानी सही मात्रा में लेना होगा, और खाने के साथ साथ स्ट्रेस लेवल को कम करने और व्यायाम को बढ़ाने की कोशिश करनी होगी।
1: जी, तो आपने अभी बताया कि समग्र रूप से कि किस तरह हम अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं खान पान के द्वारा, और जो इंटरवेंशंस हैं स्ट्रेस को कम करना है, इस क्योंकि आज के युग में स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है।
0: जी,
1: हर चीज का, छोटी छोटी चीजों का हम स्ट्रेस
0: स्ट्रेस
1: ले लेते हैं, और ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमारे ही, अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तभी चलेगी, बाकी नहीं चलेगी। तो स्ट्रेस को हमें कम करना है, खान पान हमें सुधारना है, योग करना है।
0: जी
1: तो अगर इन बातों का हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा हृदय ही नहीं पूरा शरीर स्वस्थ होगा, और स्वास्थ्य में तो मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्यता या आरोग्यता आती है। डॉक्टर स्वाति शर्मा जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: देलुप्सी हागो दरेंद्रजी प्रोग्राम बल्ला इन चटपिन मीडियम वेव्स ने एफएम चैनल के जो आकाशवाणी करके दिन वास्तु सो तो खाना मिनट सुनचु सो खासन सुकास्ता प्रोग्राम इन मेजर शर्बान चुनी पिया प्रोग्राम को चुकन पे इन सकीना बानो
3: अस्सलामु अलैकुम आकाशवाणी करगिल कना फ्रचुक पयोतपी प्रोग्राम शर्बाने चुंग जुबियासला खुरे गायां छर्सी गंतांग नास कथुक छेनोत नाची शितिना जुने सलाम पो फ्रतमो चन सोशिक यले रिन मुछे प्रोग्रामर गलुक जखन शर्मा छुनसे अछेनो मो ककफोनोन रदियांग मजगे यंतंग गार गार जुक्से योत नसंग नन मे छन मे दगमो सेनमो नयम बो जुक्से दुक्तुक सखबासिस नल्ला प्रोग्रामी छिरपो प्रोग्रामी को जुकपेका स्किल डेवलपमेंट स्कोला गाजियंतांग छकपास पेरेरिक फ्रचुगेत देर गपना गुलजार हुसैन टीचर ना बैलेंसिंग स्टडीज करियर एंड पर्सनल लाइफ दी खतुस पे का यंतांग सकवास पेरेडिक फ्रुचुगेत कसता प्रोग्राम पुला गुजुकबेत स्किल डेवलपमेंट जरबना गा मिमांग शियांग नुक नॉलेज शेस योतांग या रंग यांग नुक प्रैक्टिकल एबिलिटी योतांग खोया नुक काबिलियत योतांग त्याचुक्सला खोया नुक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस योतांग ड्यून नतांगा इम्प्रूव बचस रिगेलर चुचस ताकि खों खुंती करियर उन्यानुक या गा खों ये रोजगार चिकोतना या दिया चुकला खुंती जाती मिथे अनुक खों गंगरिया छोक दे मिंगनांग नतंगा स्किल डेवलपमेंट लेक्सिना खर्चन इंसुक दरे सी मॉडर्न तुस प्यानुक गा यानुक टेक्नोलॉजी लेक्सिना मियुल गंग प्यानुक एडवांस सोसियोतंग दिया नुक नतंगा सिर्फ एकेडमिक क्वालिफिकेशन यो चस्पोचा डिक्चस मिंसुक नि ngatanga ga job chigya employers yo tang ga nis ngatanga rozgar tang chas inang odoni demand po sirf tare academic qualification chayote menzuk khonga du suks mi mang sun ro shas in zu ga wa nok technical skills yo tang de knowledge po yo tang yang nyambo nyambo communication spera tang mi skills kon teamwork sak nyambo lakthut baselas baches po don nyambo nyambo problem solving सोख सॉफ्ट स्किल्स कुन यो चेस्पो ngatanga dare ओदे का खिमो जोर तंगन योते इनसोक दे मिंग नंग स्किल डेवलपमेंट ngatanga स्पेल जोर पो ngati धुल लखेर बि मिंग नंग इकोनॉमिक ग्रोथ मिंग नंग यंग दे चोस ला एम्प्लॉयमेंट मिंग नंग यंग दोन यम बों यम बों ngati रियस्ट्रिटी यर यस मिंग नंग लेक्सिना खखचंचिक शेसिंदोक निगातिस दी इम्पोर्टेंस इसको लजर न कतो सो स्किल डेवलपमेंट इस गतंगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सुनियानुक गतंगा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खिमो तंग छस इनसुक स्किल डेवलपमेंट पोस गतंग शेयर सिलखनि सुनियानुक या जॉब सीकर सुनियानुक इंडस्ट्री अनुक गचुक रिक्वायरमेंट चिगो चिर गोशेस योत ओदे अकॉर्डिंग गतंग प्रिपेयर बचस इनसुक गतंग चतक बचस इनसुक गावे स्ट्रोलिका गतंगा दे रोजगार पुनिया जॉब्स कुन थोपी चांस पो लेक्सिना स्केचस इनसुक निसेरिसी इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी दो स्किल्ड वर्कर्स कुन खुंती लेस पोर गेला बसे बचस पोस यंग चंग गलत चिंग महाचुकपा बचस पोस खोई प्रोडक्टिविटी दोना क्वालिटी इसका इंप्रूव बचस इनसुक सुमेरेसी जेरना एंटरप्रेन्योरशिप यानुक छेमिंग नंग तंग स्ट्रेचन चोचस इन्सोक

0: तो खुन यंबो वक़त तंगच खुआ वक़त तंगचस पो अति जरूरी इंसुक जिंदगी हुसन पो दना तवाजुन पेनुक दुख मारूफ मुफक्किर चिगिस जरनुक दि फरक मेत की रंग चाम च कुलेडुलेनु बल्कि अहम पदुविन की रंग दुख पमिन दुख देफिला जरूरी दुख की सपोत पे दि सफर पु जारी जगचा चाहे दि रफ्तार पु आहिस्ता खुरंग युत नसंग रिंचन सामीन कुन यों सिंह तंग सक दिरिंग दि अहत पु बेत की अतज नतंग सिर्फ गलत तालिब एलुम चिक या कामयाब मुलाजिम चिक चे कोशिश मी बचा बल्कि नतंग दिजत इंसान चिक नतज नतंग चे कोशिश बचा कि ते इंसान पिलग एलुम योतं महारत यानी स्किल योतं गल इखलाक योतं तो न रंग खानदान माशिरा यूल फिला तो न वतन फिला को साबित फायदमन साबित चिक छोगम गरी मौजू पो खतुम बाबा चिक तुल्ला अल्लामा अकबाल एक खूबसूरत शायर चिक अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है आखिर पिका सिर्फ जना पैगाम पो असल कामयाबी दो मिन की नतंगती जिंदगी अनु चाम से मसरूफ दुगेनुक बल्कि त्यू इनकी नतिस नति जिम्मेदारी नति ख्वाब कौन नति रिश्तेदारों की शिकंडू इनी शिकिल्ला नतंग चाम से बरकुन अनु खूबसूरत तवाजुन यानी कि बैलेंसिंग नतिस कायम जगनुक खुदावंद आलमिस नतंग सकल एल्म नाफे शजदे बसी रिक्याल महारत कुन सब पोत पे नतंग तौफीक शजदे सुनशिक नति वक़त कुन यानु बरकत तंशिक तो नतंग सकल दिजत बैलेंस मुतवाजुन जिंदगी पात पे तौफीक तंशिक तो सिर्फ नति फिलामिन बल्कि नति माशरे फिलांग फायदेमंद साबित छोक आमीन या रब्बल आलमीन
1: दरे सकपा एंतिस गुलजार हुसैन टीचर कना बैलेंसिंग स्टडीज करियर एंड पर्सनल लाइफ दी खतुस पे का स्पेरिंग यानि नुपिन रियांग मा जगे देंता दी स्पेरार देमो सोरे दुख तो या एंतिस दुनी कना फन खेलें तो जना नंगयंबो अची स्टूडियो गडी न जोम से प्रोग्राम इ तुस पोंग थामा थोनिन दुख नन मेटलुस नायांग यंतांग नंगयंबो स कथुक छचस देमन पुंगा इज इन शज देबोस यजु खुदा नार संगमानी फखरे

0: اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل.
1: درن د سوت وین نجوت بین میډم وزن اف ام چلن کجین آکاش وانی کرکل واس په خبر نشینو کز د آکاش وانی دلی کنه هندی ننګرزی خبرن ټلې به ترې لیلا کر پاسا
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। सूत्रों ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में घोषणा की थी कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इस बीच संसद परिसर में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हथकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
4: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है। हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
2: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक के दौरान परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी पार्टी की मांगों को ध्यान पूर्वक सुना गया।
5: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
2: इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है।
6: डिमांड है तीन, उनमें से दो डिमांड कॉम्पेंसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उनसे सरकार पॉजिटिव है।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे सदन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। उधर लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। इससे पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंतकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। आज नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
7: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन, और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम।

0: लोक्सो चैनल उनका एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंगिन से युत बुकिंग बेफिया कॉल बाजात 8700014242 का।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर।
2: 8700014242।
3: सुनो ना।
1: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: मीडियम वॉइस ने एफएम चैनल का दिया आकाशवाणी करगिल मिनट चौकासु कस्ता प्रोग्राम माँ बाजत बहरी तबील रिंगन मजद सब उसने हाजी मोहम्मद हुसैन बाबिस कहते दी

미네모 이즈 FM 채널 가지고 아가시원이 가리린 가서다 프로그램 이름에서 세겟 보내 비야

0: इंसान ला अज अलग अलग कसम कसम का ता जरूरी सिंगा ता सब सब सिंगा ता स्किन कैंसर या ngati मिग से मिग ngा ता जिस मुझ मुझ जरूर मोचा और मी मना शी जा जन सु या योर ngati ngati प्लान नि का ती सया दे का बिल्कुल नेगेटिव असर खतरनाक जिस मु असर हो जन सु देबरा ओ दे जिस मु या दे गदे किरण पो ओ दे रे सुन ओ दे ओजुन गेस पो ओ दे स्ट्रोस्फियर खने के स्ट्रोस्फियर दे खने दे गेस पो ओ दे नोस गा पो लो अगर दे लग लेकिन ngati दे जरा पोल्यूशन बना चीज का साइंटिस्ट एक्सपर्ट जन की ओ दे लेयर पे का असर अमल और ओ दे ওদের ওখানে অজুন গেস বা পুরা ছেদ সংসল ছো ছো হম বুচিনলো ওর বুঝে যে না ওদের ইয়াগজে ডাইরেক্ট নাতি ওদের মালাপ নাতি সে ফোকসা দিন সুজে ছানা গাদে না দে ফিলা না তা ইয়ানি কি পলিউশন বিভাগ জাস্প মাজা রুইন দে দেবে জি কাশিস
1: ছানা না দখসা ইয়ারা জরে জু থমেদ লাগা তা নাম কোরি ওজ জে তা চিপো না ওয়া গাতার গুন লাগা তা খাও কাম ওজ জে গাই কা তো গাতা দখসা ইয়ানি পাতা মেত পে মাল থোনে কানা গাতা দখসা ফ্রেন ফড়াই সুসে ইয়া দেকে না গাতা ফ্লোগ সুসে জরে দুন গাচুক জসা জি কোসেন সামে দরি হিসাব পিকা
0: মাখসিস গাসা দখসা মানা दुनिया पूरे दुनिया लेवल के चैलेंज तो दुनिया हिंदुस्तान सामने बल्कि पूरे दुनिया गंगमा लीडर गंगमी संभाव की गति चिब से गति दी माहौल पर जग बजा जिसमो से जग बजा उस पे लत उस पे लमाना ग्रह में याद उस पे लमाना मन नमस्कार रुसे मा जन कह चालिक चुकशिक या मा छुरुत खमी हो चुक दू गति हिंदुस्तान से बल्कि दुनिया 90% कंट्री दी मतलब फिगर और दिखे हर ले हर साल पूरे दुनिया लेवल का एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस और पार्टीज यानी एक मीटिंग छत दे दुनिया 190 कंट्री पूरा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर साहब से देखा हर साल मीटिंग बाद दी दुनिया गाते इंडस्ट्री वसना दुनिया का मस्जिद पिन कि हर चीज बैलेंस होती है हर चीज ठीक होती है ओदे लेवल पर चीज उसके रुक यानी कि दक्षा जैन की पिछले 100 साल गाते ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर पो 1.5 डिग्री सेल्सियस के तीन लो और शायद रिसेंट सोल की कंट्री खर्ची माना चोल लगाते गंदगी बेन पॉल्यूशन में छाना ग्लोबल पो जब दुनिया गर्म छाना गाते कंट्री खर्ची ग्लेशियर से कंट्री खर्ची माना समुद्र बल्कि दुनिया लेवल छो चैलेंज लेकिन बदकस्मती से कंट्री खाची दखा ची मेरे जो बना एक कंट्री से नियत तान की मतलब गरीब कंट्री अमीर कंट्री खिंतिस इंडस्ट्री खिंतिस कम बच्चों की दुनिया नचा ना चुक चुक ना इंडस्ट्री हो सिन अच्छा इंडस्ट्री पहले खिंतिस स्टार्टिंग बस पहले खिंतिस 2-3 साल पहले खिंतिस परिश्रम बजे खिंतिस बस होते फिर खिंते पहला अगर दिन अच्छा दसा दुनिया कोशिश में रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर लाइट का इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिसिटी जरिए का वो जो एनर्जी इस्तेमाल बल्कि जिससे मैंने पॉल्यूशन मैंने बिंग चलें लेकिन दाखा गरीब कंट्रीज में ओदे विला खिंदा अमीर ने नाचा फंडिंग बस क्योंकि खिंदे गलती क्यों खिंदे क्योंकि दिस ने खिंदे पॉल्यूशन में क्यों खिंदे बस दे लेकिन कंट्री के अमीर कंट्री खाची दाखा दो खुआ एक्सेप्ट मचा है क्योंकि नाता सब लोग पोषण को फंडिंग बा तैयार मचा है दो एक छो एक रिकवर्ड करने का नाता साहब जो बख्शिश
1: बख्शिस मुर्तजा अली साहब छाना तरह ना था मैंने मामू लेकिन तुस पुस खाशे ज्यादा तामिनो आखिर फी का यंग रेशी दे अनुगना रिंतोशन स्पेरारी चुमाले
0: बख्शिस ना देना जो कि नसा नाता सग इंफरादी लेवल का इंडिविजुअल लेवल का जिम्मेदारी समझे मतलब स्कूल से लेके हॉस्पिटल से लेके इवन अतिमान संग अति हर छो से लामा इन्ना हिंदुजा में पंडित साग इन्ना हाँ यंग अति आगा इन्ना खून सग कुंती छो से नाम या छो से गार गार यानी कि दुजदान छाना गैदरिंग छाना कहते यानी मजलिस छाना उदून यंग पूरा दुस जिम्मेदारी वाजिब शिष्य से आते जुम्मे खुदबाओं ने यंग अति मजलिस से नजर बोशन जो कि दसंग आते बाकी इशू से आते दी इशू का एक टॉप माना प्रायोरिटी समझेंगे गाते जर बोशिन जो कि गाते हगो तंग बोशिन कि गाते माहौल बचाम समझा बोशिन गंदगी मिहांग बोशिन दशा सुन या रां जिंदगी जग बचा गाते गाते लेवल का रां चेंज बोशिन दशा सुन स्कूल के दक्षा दक्षा लगभग गवर्नमेंट हर स्कूल के दक्षा लगभग माना बेदारी तान रुको एनवायरमेंट रिलेटेड हर स्कूल का असेंबली का इन्ना या क्लास है इन्ना और शोबून आना हो अलग अलग दे प्रोग्राम बात माहौल माहौल रिलेटेड लेकिन दस वाला गाती आप दू मजलिस या आप दू गाती मेंबर होने का ना या गाती मजलिस नजर पूरा सक लोग से ताना कहते गाता मना गति करगिल गति लद्दाख गति इंडिया मना साफ लुशाज 100% लुशाज अगर म्यूनिस खुंती बिहेवियर पे खुंती बदचोजंग चेंज होना कहते मामू को समय जो चेंज आते माहौल को मर गया था चेंज आ बजा
1: बख्शीश मुर्तजा अली साहब यारे जरी रेंथोशन वक्त कुने ना वक्त में से आकाशवाणी करगिल ना ग्रगंचिक यारी रेंथोशन समझोन मेमांस कुन सक पहले चुक्स पी यार अल्लाह उजू सरीमो अस्सलाम वालेकुम
0: अस्सलाम वालेकुम
1: त्रिसो यंता सक पहले त्रिसो तंखन पिन में मास्टर मुर्तजा अली कसता प्रोग्राम इस हंसे का सहमत तो खेक नजर
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

0: Nis rasi duk drip irrigation zirin duk. Sagya tilung pyanuk sciences chu bachai we fila drip irrigation systems chosin zuk. Gays trolika chun zaya macha astakjin ya fasiluni patakun sakpek chule bacha zuk. Diana na chuksla sprinkler nizam chiduk. Gau skambo donar riyul elaka nyanuk di nizam pu kafi fanke chatsuk. Gays trolika chu charpe zoste ka jingu nyang barabar basi leba chatsuk. Diana na chuka water recycling zirinduk. Dare dunia ti yul khime anuk, yani tarqi yungsiyot pi yul khime anuk technology kole ganda chunsa befila di chuks technology kato kol bachatsuk. Gaz base ganda chu dubara saf sungse ngatang ayang layak chuldan matsu. Ga chu factory para gun ba gun yang do na jing gun yang nuk kol bachatsuk. Gaz base saf chui bachat chatsuk. Dia chuka zirinduk desalinization ziri, yani samandari chaku chu thumat pi qabil shefila technology kol bachuk gas ga wazir bachuk desalinization zire zinindu diana na chuga ai dona soma sensor is chui pipeline dam dona rjing unika taluks bacha chu ga gas trolika gar chu chu zaya chenod nagar gar chu sal pipe leak chenod na ka to di khabar time nembo tang mangyan machu gas trolika waxika di paibuni maramat bang yan matsuk. Ningas ni sperao di kajak se. Diri akashwani kargil studio anga nambu di ka madam Zarina kyotiot. Chana ma'am, salamu alaikum ma'am.
1: Wa alaikum assalam.
0: Sak basis nan la yarang uju tsering mazare yare ziyari rintos chan wak suni anna wak sphinx si akashwani kargil studio as kyotcha si fila yarang uju tsering mazare ma'am.
1: Thank you ma'am. Yare nga di kayung zeshas pula.
0: Chana ma'am, diri ngati topic bukharang hajo. Sustainable living through science ikotam haju yot panazom se sarba sesna langa ziyara ngadi arti fraluks bet pa ki sustainability khurang chin du fespa base mol na bakhshis
1: sustainability through living du khamam ne sarba sang pela nangas du yeranga ek bar english ang zed de ka nangas ngati spere ang du convert bethala sustainability through living ka living zarsas pokhurang ye ek aisa du zux tarqiq in zuk paya ki जिस जैसे हम नेचर में अभी हम जी रहे हैं तो हम कुछ रिसोर्स का यूज करते हैं तो रिसोर्स खच की यूज बात हला गाँव का अच्छी बस यूज बार कुछ जबाना रंग नीट नंग पूरा छेद और अपने नीट्स के साथ भी कोई हम कम्प्रोमाइज ना करे कम्प्रोमाइज में बचा दो ना गति फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सोच के यूज करना उसे गते चीजें ओदो लगाते चीजें बच जबाना सस्टेनेबिलिटी जब छोड़ा देख ना गाते सस्टेनेबिलिटी थ्रू लिविंग जेर भी मतलब खुरंग ध्याना इन गतंग गतिस डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों का गतिस गति दिन ब दिन जो हम घर में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं उसमें गतिस चीज़ मन मंगमो यूज़ बात हला जो ने अदुल ना अदुल ने गतिस गस हो अच्छी बस चेंजेस क्यों चिन्ने जब ना गतिस गतिना गति फैन यूज़ बात हम बहुत सारे ऐसे चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें हम बाजार से सामान लेके आते हला ले सामान उनकी यूज़ बस अपना ओदे यूज़ बखानी सामान पुंगाते अच्छी बात जब ना जब अदु ngatang mirgo shikchana dabe gin nang ngate zodo dasbin ang phang stang mat ni odun ngate chi bacha zabana odun ngate ngati life yang reuse base reuse bacha ngati life yang reuse base
0: usko dobara call bhi
1: bacha oh ya dobara call bhi fralux bacha gaon ngate chi bacha zabana ga so fralux po kaise karenge zabana odun ngate yang reuse be filang ngate us dabbe ko ya kuch decorate base ya usme ngate masala jak pe fila ya yung nirma jak pe fila ya kisi aur cheez ke liye bhi hum usko use kar sakte hain ध्यानो लगाते जर्शन सस्टेनेबिलिटी थ्रू लिविंग जर्शन मत डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीजों का गाते इस्तेमाल बात हमें बात मत मान चीन दक्षा बाजार ना गाते ची ची सीखो ना गाता हुआ थैला यो था ला थैले या पॉलिथीन बैग क्यों या थैले गाता हुआ तंगे सब्जी क्यों ना गया सामान सीखो ना ची क्यों ना ने ओदे थैला गाते डस्टबिन यंग फंग में बदले का ओदे थैला गाते खेरे गाते या जहाँ पे भी हम लेके जाए या गता गता गाते ओदे चीज सुनिय हम गाते दूसरों से चीज सीख बचा गांव अतंग यंग दोबारा अतिन उन्हें यूज़ छेता ला सस्टेनेबिलिटी थ्रू लिविंग ने ओदे का नंग अतंग अच्छी छचिन जबाना ओदे का नंग अतंग अतंग दूँ छचिन की दे रिसोर्स पंग अते चंग नुकसान अंग मतंग नंग अति प्लेनेट लंग अतंग चंग नुकसान जिस अतंग गा प्लेनेट पे दुख सो ना ओदे प्लेनेट पे लंग अतंग चंग नेचर को भी हम कोई नुकसान नहीं कर रहे ओदे चीज पंग अते गंदा कम सोंग अते ओदे गंदा अते यंग अति रीयूज फिला बना अतंग चंग अति नेचर का नुकसान छिमायोंस गाता एक तो ना रिसोर्स पों लूस हाला बचाई सो दोनों गाता गाते गाती यूं चश

0: नहीं प्रूनी फिला ngate samba tang sala agar daksana nga tang ngate ngati zindagi na aram se hum kar rahe humko ye bhi sochna hai ki kal कल जो बच्चे आएंगे नतीर यप नयों चनी जनरेशन को उनको भी जो रिसोर्स है जो नेचर खुदा तंखा नहीं गता दे चीज सुनहला नेचुरल रिसोर्स गता माउंटेन योत वाटर योत एयर योत ये सब नतेज नती थ्रू नि फिलंग बचे ही बजा चा ओदो लदिया नौ खुरंग जशन सस्टेनेबिलिटी थ्रू लिविंग जरे जशन नामिया गता बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जब दे गला गाँव गता डिस्पोज मिछा दे हला ने रूल मी रूल में ओया नि ओदो चुक सी चीज सुन माना यूज में बचा गा उसती प्लेनेट को नुकसान दे थोड़ा ओदो चुक सी चीज सुन गाते यूज कम बचा गा ध्याना वाला खोरा गाते सस्टेनेबिलिटी जस्टिन मैं गाँव गाते फ्यूचर गाती यंग चनी फ्रून यंग संबा तंग से गाते गाती जो रिसोर्स हम यूज कर रहे है ओदो यूज बेत अदो लगाते सस्टेनेबिलिटी थ्रू लिविंग जरे जस्टिन मैम
1: जूनियर मोल सजू ड्यू गाते जगजरी मिट्स है अनुख जगजरी गाती जिंदगी अनुगाते गा चुक शिवा प्रैक्टिस बची दिस कर ले
0: जगजीर मिसिया हम बहुत सारी चीजों का हम अभी भी यूज कर रहे हैं पर फिर भी बहुत सारी चीजें हम गतिस दक्षन इन नंगतिस माना यूज में बात दे हम लाइटली लेते हैं रहने दो यार ये क्या यूज करेंगे सोच के आते फंस तंग मत हला निंगती ना गतिस हर कोई गतंग सु इन नंग छु यूज बेत मो तो लंग से नंगते लक पाक छुत या गोक छुना या गुंजक छुना गति ची सगे फिला गति छु यूज बेत अमित ने ओदे छु गति ची समय जमाना छु गति गतंग ना खिमो यत गतंग ना हमें पता है कि हमारे पास इतना ज्यादा पानी है बाहर के कुछ जगहों में अभी भी वहाँ पे क्या चल रहा है जबाना पानी की कमी चल रहा है वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है तो हमें उन पानी को कैसे बचाना है जबाना गतेज रंग जरूरत को पूरा बचा रंग रंग ने वो कम्प्रोमाइज में बचा पर उसको ज्यादा यूज भी नहीं करना है बाथरूम में अगर हम नहाने जाए ओया ज्यादा मैंने यूज में बचा गतंग बाथरूम में गतंग गो खुआ छाना ओया ओया लिमिट हिसाब से एक बार लिमिट हिसाब से बचा गतंग बाथरूम से गो खुआ छाना गतो गतेज शावर फुत तंग सुना घंटा रे रे शावर यो गर्सा दुग जब तक हम क्या बताएंगे लोगों को इन सबसे पहले रंग बार क्वेश्चन देगा ना बाकी सगा दो जबर क्वेश्चन रंग बाकी नंगाती ची ची शिगोत नंगाते छू इन नंग दक्षन हिसाब ची यूज बचा गो खुचि नंगा गो करी गांव छाचा दुगया करी दो छाचा दुगया कुप्पू गांव छाचा दुख हाला उससे ज्यादा यूज नहीं करना है दो इन दो मेन मैं इलेक्ट्रिसिटी गतिस नंगाती नंग ची ची शिगोत ची सगे का इलेक्ट्रिसिटी का यूज वॉशिंग मशीन योद या फ्रिज योद या गीजर योद या एसी जो चीज जितने भी चीजें हमारे घर में अभी चल रहे वो सब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कायम है सुना तो हमें इलेक्ट्रिसिटी को कैसे बचा के रखना है जबाना गतिस इलेक्ट्रिसिटी दूसरों का बचाई बाई जक्षिन गतिस गाची गतंग गतंग और गोशा में था लगातंग नंग चंग दखन दुख सो निमा यो ठीक ठाक निमे का लाइट एनर्जी लाइट का नंगातंग देना यो नोत निमे का लाइट थो भी नो था थो भी नो तेना गतिस निमे टोरकिल नंग लाइट तुक जग पना गति चंग दे निक सो आमा सो दे फायदा नहीं उदू ची बचा जबाना हमेशा गतिस स्विच ऑफ रखना है घर में इलेक्ट्रिक फैन हो या जो भी चीजें हो गता गाँव इलेक्ट्रिसिटी का ढूले था गोशा मेत उदे चीज सुन गते बचा जबाना गतिस ऑफ बस जगचा ऑफ बस ना गतिस प्लग पुतक जग दे गतिस इलेक्ट्रिसिटी जब हम ऑफ करते स्विच करना ऑफ बात पर पलक पुतक जगचा उस पुसंग गती चीज छाद लो जबाना 75% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम छाद लो सोरा ने दो मी बचा अनप्लग बचा या फूटे ठीक बस योग भी कर सकता हो फूटे जग पना गता गति इलेक्ट्रिसिटी अंग बचाई सो दो मिन पर यंग पॉइंट चिक चिक तो गते जेना गतंग 3R के बारे में तो सुना होगा गतंग सगा छोरे था लगाते सुन से नगाते फ्रू सगा से बात इन्वायरमेंट या जो जो भी गतंग गति क्लास में बच्चों को भी हम बोलते हैं गति घर घर में भी बहुत सारी चीजें हम ऐसे यूज करते हैं 3R जरे गौलंगाते रिड्यूस या रीयूज एंड रिसाइकल जरे हला गति ना ची बिंखानी चीज दक्षता गुल्लक शिरगोशा में ना या गता गति ना बर्तन शिरगोशा में दिया खराब सो सो था पुराना छाना गाते फाद दे हला नहीं उदो में बचा उदो गाते ची बचा जबाना दिखे ना सब्जी क्यों माया बाजार ला चुक सिंह ना बाजार लगा दो छचिन ना गाते ज्यादातर पूछी बाजा मैंने गाड़ी देते दो मी बचा साइकिल का यूज करना है वॉक करना है उससे गति हेल्थ तंग ठीक ठाक लुशिन हाजो साइकिलिंग करने से हेल्थ तंग ठीक ठाक लुशिन वॉक बना गता दखन साम सिंगनाती हूँ मिंदुक जो गता ना दियान पुजे निया लेन दुखचा गाड़ी सुलचा गाड़िया नचा बिंग से देखा छा छा पुस बसे ने ओदे चीज सुन गते ची यन पो गते बचा ही बचा गति एयर पॉल्यूशन का दुछा ना गता बहुत प्रॉब्लम मन मांग मुझा था अस्थमा जरे बहुत सारी चीजें ऐसे हो जाते हैं गता छुमी मिसा ही से प्रॉब्लम छे था जो ने ओदो ngates kam nyan mi hisab po kam be koshish bacha ngati daily life yang no ngates nyan mi hisab bi kam be koshish bacha.

0: मतलब पुंगा ते सगे बारा समाता जे गाता गाता चाल ता से दुखचा मेंदे जो एक्वेटिक लाइफ गाता गा चाम शियो मत फिश शियो मत चाम शिगे यूएन इज एजेंडा सेट बस दुख जो आंगा थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जरे एक एजेंडा सेट किया है उसका मेन मकसद क्या है जबना ओदे एजेंडा नाम सेट बस पिन सुने यूएन इज जबना उन्होंने ये एजेंडा एस्टेब्लिश किया था 2015 में सुरा और उनका ये एजेंडा 2030 तक उन्हें ये एजेंडा पूरा कम्प्लीट करना है सुरा ओदे अनुखो मकसद पूछी दुख जबना ग्लोबल जो चैलेंज अभी गति दक्षिण गति मिथ्या डूले न था ग्लोबल चैलेंज बहुत सारे चैलेंज डूल रहे क्लाइमेट चेंज हो रहा है दुख फिर किला उदोन सक नाते कम भी कोशिश बचा यानी ये सब इन इक्वालिटी यो दिया क्लाइमेट चेंज हो दिया इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन यो दिया पीस एंड जस्टिस हो दून सक कम भी कोशिश बन दुख पाती यूएन इज दी एजेंडा नु खोज दू देना जख्स दुख की एजेंडे चोज दुख दी एजेंडा खोज बचाओ सेट पो 2015 देखो दी का लास्ट पूछी ची का बचे बनाता ची दखन टाइम पे आता चीत हुआ में था जो ग्लोबल चैलेंज बहुत ज्यादा राइस हो रहा है तो ओदो निका क्लाइमेट चेंज छना या इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन छना एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन नॉइस पोल्यूशन दून गांव में कांगा तांगा लज बचास पो खोए मेन एजेंडा इन सुपे खोज 2030 तक इस एजेंडे को पूरा कंप्लीट करना है सोरा दे एजेंडा खोज ओदे एजेंडा लखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जेरे सेट बस दुख एस डी जी अंग जेन दुख गाला सोरा दे अंग खोज 17 गोल दुख 17 गोल रखा है उन्होंने सोरा बहुत सारे देश है उन उसमें उस एजेंडे में बहुत सारे देश है यूएन अंदर का देश माना मांगमो दुख दिया नंगा थी इंडिया नाम दुख सोरा यदि एजेंडा खोज 2030 तक खोज दी एजेंडा पूरा कंप्लीट बचे दुख सोरा छुटा
1: कसे जीवू यार मैंने फेसबुक पर बस मुझे छाने मैं मंगती तुस पुसंग इजाजत तंग में दुजू मंगती प्रोग्राम ही तुस पंथ हमारे थोड़े इन दुख छाना आखिर पिक यार आज यार डिफरेंट लुक्स बैठ पाए कि दी सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड यार इस ये मंगती यान कानून सख्त पे केरी का जोक्स फ्रेंच सेलेट
0: ngas duz reju ngati nang khangma ngati radio yan khan khashi ki daksan hala ai dorot pana sagal ga mobile ot ne wo log ghar mein baith ke radio sunte to ngas kho dana spero zarat pa ki aap log zyada yan ni hisab po yante chi bacha rang na jitne ngate cheez hum apne ghar mein use karte ngate na chi chi cheez use ba ma mein jo hum day to day life mein hum bahut sari cheezon ka apne ghar mein istemal karte hain yan mein hisab po odi cheez sunya चेंज होमी देना बोस या नतेस दक्षन फार्मर सिगिना नतेस नतेस जिंग ता बेथा जो जिंग विंग ता पना वो फर्टिलाइजर यूज करते पेस्टिसाइड्स यूज करते ओ दे फर्टिलाइजर जो उदोन सगंगमा नति ची छेज बना छु तंग मना देव छु खुरे खेरे नति छुके छु यंग देसे थाला ने ओ दे वजह से नता नुकसान छजिन नति नति आता पोन नति नंग अजुक सोत खानी अछि नमून नत नस दो खो अदु जेरे की आप लोग अपने हिसाब से अगर जितना हो सके आप अगर कर सकता है तो नति जिंग सगानुक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कम यूज करने की कोशिश करें और दो मेन पंगाती नंग अचाम शिंगाता इलेक्ट्रिसिटी का डुलखानी चीज होता है जो ओदोन सगन में सब पंगाता गा टाइम पीकर गोशो ओदे टाइम पीकर तू खा मैं नहीं बोल रही हूं बिल्कुल मत जलाओ जरे हा जो बन बस जगचा दो मेन पंगाता यंग ची यूज छमा में जुंगाता नंग सिलेंडर यूज छे दोन सगनाता नेचुरल रिसोर्स इन दे हला न्यान में सब पंगाते सगती गति खंगमा जो गति नंग नंग न थपखानी चीज सगते यूज बे कोशिश बचा बाहर खानी चीज पो कम यूज बे कुछ बनाती फ्रून लाइन नंग मतेस बाजार ना बर्गर पिज्जा ये सब खिलाते दो निसंगता नुकसान काफी तंग मचू मती हेल्थ तंग नुकसान शी चेंजेस होंगे दो दो ने वजह से छेन वचा मिंदो निगता ओ दो निकंग मतेस कम बे कोशिश बचा
1: छने मैं यारा यार रिस्पेक्ट जो जो सेलिंग मज़े ले यार जरे रिंटर्स चान वक्त से ना वक्त पिंग से आकाश वनी कर के लिए स्टूडियोस के चेस फिरा यारा जो सेलिंग मज़े ले
0: थैंक यू मैन थैंक यू सो मच मैन
1: दिया ना टीसो ने हम बहुत दिलिंग से प्रोग्राम ये वक्त पुत हम आते हैं इंदु को दिया मज़ जगह दिया तंग दिलिंग से साइंस प्रोग्राम ये वक्त पुत हम आते हैं इंदु को दिया मज़ जगह दिया तंग दिलिंग से प्रोग्राम पुर दे मोट सोरे दिका ना फैन के लिए ने दुख तुक नन मेट सन मेट लुस ना यों मेट पुत सुन यों यों सो मैं खातु शुक्र यं तंग ने मोट थुक जा दे मन पुंगा इज इन शेज दे बोज या जू खुदा नर संग मानी फ़ख्र Thank you.

0: का बुलेटिन लेकर मैं तजम्मुल अंदराबी। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई करने पर दिया जोर, कहा तलबा की मफादात हुकूमत की अव्वली तरजीह। मरकजी काबीना ने पेपर लीक और इम्तिहानात में धांधलियों के मामलों में सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों के क्याम से मुतालिक मुसवदे बिल को दी मंजूरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पूरे समाज बिलखसूस नौजवानों पर शहीदों के अज़्म और वफादारी से तरगीब हासिल करके दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में मुत्तहिद रहने पर जोर। और मौसम में बेहतरी के साथ ही दरियाओं में सतह आब में बतदरीज कमी, लोगों ने ली राहत की सांस। खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले के बाद पिछले अढ़ाई महीनों के दौरान कई इकदाम किए गए हैं और कसूरवारों को गिरफ्तार किया गया है और वह सभी जेल में हैं। एक वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की अव्वली तरजीह यह थी कि तलबा का तदरीसी साल जाया न हो और ये इम्तिहान जल्द अज जल्द मुनाकिद किया जा सके। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक मामूली मामला नहीं बल्कि लाखों तलबा और उनके वालिदैन के लिए एक तकलीफ देह मामला है।
1: पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक वीर कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाए।
0: इसी दौरान सीजेपी और मरकजी वजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के दरमियान नई दिल्ली में आज एक मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद नामानिगारों के साथ बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि सीजेपी ने तीन मुतालबात रखे जिनमें पेपर लीक को रोकने के लिए तजावीज भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सीजेपी के वक्त से कल दूसरे दौर की बातचीत करेगी।
2: लगभग दो घंटे सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार की बातचीत में शामिल हुए, उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वार्तावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
0: उधर सीजेपी के तर्जमान आशुतोष रिंका जो वक्त में शामिल थे ने दावा किया है कि सरकार ने उसूली तौर पर उनकी दो मांगों को पूरा करने से इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में नई दिल्ली में मुनाकिदा इक्तिसादी मामलात से मुतालिक काबिना कमेटी ने आज भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन स्कीम को मंजूरी दी है जिसके तहत मुल्क में तीन कीमियाई पार्क्स कायम की जाएंगी। मजकूरा स्कीम का ऐलान 2026-27 के मरकजी बजट में किया गया था। नामा निगारों को तफसीलात देते हुए इतलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 3030 करोड़ रुपए की स्कीम अगले पांच बरस तक जारी रहेगी। काबीना ने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बालारी गुंताकल रेलवे सेक्शन की तीसरी और चौथी रेलवे लाइन की भी मंजूरी दी जिस पर 1264 करोड़ रुपए लागत आने का तखमीना है। मरकजी काबीना ने पेपर लीक और इम्तिहानात में धांधलियों के मामलों में सख्त सजा दिलाने की गर्ज से फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कायम करने से मुतालिक मुसवदे बिल को मंजूरी दी है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मुनाकिदा काबीना मीटिंग के दौरान मुसवदे बिल को मंजूरी दी गई। ज़राए के मुताबिक इस बिल को अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई आज नीट पेपर लीक मामले को लेकर हिजब इख्तिलाफ के एहतजाज और शोरगुल के चलते आज पांचवें रोज भी मुतासर रही। लोकसभा की कार्रवाई आज पहले इल्तवा के बाद दोपहर 12 बजे जब दोबारा शुरू हुई तो पार्लिमानी अमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत पहले दिन से कहती आ रही है कि वह नीट पेपर लीक मामले पर बहस के लिए तैयार है। उन्होंने हिजब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी से अपील की कि वह अपने पार्टी और फका पर जोर दें कि वह ऐवान की कार्रवाई को ऐसे तरीके पर चलने दें। ताहम शोरगुल के बीच कार्रवाई को सोमवार तक के लिए मुलतवी किया गया। नीट मामले को लेकर हिजब इख्तिलाफ की नाराबाजी के पेश नजर राज्यसभा की कार्रवाई को भी दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी किया गया। इससे पहले आज दोनों ऐवानों में कारगिल जंग के शहीदों को खराज अकीदत अदा किया गया और ऐवान में उनकी याद में खामोशी इख्तियार की गई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मरकज और कौमी टेस्टिंग एजेंसी को हिदायत दी है कि वह नीट इम्तिहानात पेपर लीक के

आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं यूनिवार्ता के वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद आजाद। लोकसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आज हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही पहले स्थगन के बाद 12 बजे दोबारा जैसे ही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी आज सदन में मौजूद हैं। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि प्रमुख विपक्षी दल का नेता होने के नाते और प्रधानमंत्री के पेपर लीक पर सख्त कदम

उठाने की घोषणा के बाद विपक्ष को संसद में इस पर चर्चा कराने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब सरकार कठोर कानून बनाने जा रही है, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़े कदम उठा रही है और सरकार की मंशा मजबूत कानून लाने की है, तो फिर विपक्ष को चर्चा में सहयोग करना चाहिए। प्रमुख विपक्षी दल के नेता होने के नाते श्री गांधी को इस दिशा में पहल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि चर्चा नहीं होती है तो इसका संदेश गलत जाएगा। श्री रिजिजू के आग्रह के बाद भी विपक्षी दलों ने हंगामा जारी रखा। पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए और उन्हें अपनी सीट पर जाना चाहिए। उनका कहना था कि आज महत्वपूर्ण विधेयक है, इसीलिए सदस्यों को अपनी सीट पर जाकर सदन को चलाना चाहिए। हंगामा जारी रहा तो पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। श्री बिड़ला ने सदस्यों से शोर शराबा नहीं करने का आग्रह किया, लेकिन उनकी बात पर ध्यान दिए बिना सदस्य नारे लगाते रहे। इस पर श्री बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, सदस्य सवाल पूछते हैं और सरकार की जवाबदेही तय करते हैं। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कार्यवाही शुरू होते ही सदन को कारगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 2026 को कारगिल दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है, जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय योगदान दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। सरकार ने लोकसभा में स्पष्ट किया कि देश में किसानों को उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम से पहले राज्यों की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उसी के आधार पर मासिक आपूर्ति योजना बनाकर उर्वरकों का आवंटन किया जाता है। सरकार ने कहा कि खरीफ 2026 के दौरान यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस सहित सभी प्रमुख उर्वरकों की राज्यों में पर्याप्त उपलब्धता बनी रही तथा उनकी आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है। रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने बताया कि उर्वरकों की आवाजाही पर एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली के माध्यम से नजर रखी जाती है। जिला और ब्लॉक स्तर पर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। उन्होंने कहा कि फॉस्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए वर्ष 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति लागू है। इसके तहत कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने के लिए स्वतंत्र हैं, जबकि सब्सिडी पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर दी जाती है। किसानों को डीएपी 50 किलोग्राम की बोरी 1,350 रुपए के वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए खरीफ और रबी 2025-26 तथा खरीफ 2026 के लिए एनबीए सब्सिडी के अतिरिक्त 3,500 रुपए प्रति मीट्रिक टन का विशेष प्रावधान भी किया गया है, ताकि उर्वरकों की कीमतें स्थिर बनी रहें। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014-15 से अब तक देश भर में 26 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। विभिन्न अध्ययनों में पाया गया है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिशों के अनुसार उर्वरकों के उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8-10% तक कमी आई है, जबकि फसलों की उत्पादकता में 5-6% तक वृद्धि दर्ज की गई है। नीति आयोग ने भी एनबीएस योजना को संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए उपयोगी बताते हुए इसे और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण

राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में कहा कि FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक खाद्य उत्पाद मानक तथा खाद्य योजक विनियम 2011 अधिसूचित किए हैं, जिनमें बिस्किट, खाद्य तेल तथा अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न खाद्य उत्पादों के मानक निर्धारित किए गए हैं। इन विनियमों के अनुसार पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है। चूंकि पाम ऑयल एक मानकीकृत खाद्य तेल है, इसका उपयोग स्नैक्स, बिस्किट, नमकीन और अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थों में खाद्य तेल के घटक के रूप में करने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनियमन 2020 के अनुसार खाद्य उत्पादों की सामग्री सूची में प्रयुक्त खाद्य तेल का विशिष्ट नाम देना अनिवार्य है। केवल खाद्य वनस्पति तेल जैसा सामान्य नाम लिखना पर्याप्त नहीं है, इससे उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिलती है और वे सूचित विकल्प चुन सकते हैं। सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है। FSSAI के मानक स्वतंत्र वैज्ञानिक जोखिम आकलन, वैज्ञानिक पैनलों और समितियों की राय पर आधारित होते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कोडेक्स मानकों के अनुरूप बनाए जाते हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक लिखित उत्तर में कहा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत उन्होंने महिला और बाल विकास मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजना मिशन वात्सल्य के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है। मिशन वात्सल्य योजना अन्य बातों के साथ साथ किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 तथा मिशन वात्सल्य दिशा निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके और बाल देखरेख संस्थानों को छोड़ रहे पात्र युवा वयस्कों के लिए उत्तरोत्तर देखभाल सहायता प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक लिखित उत्तर में बताया कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं, अतः जन स्वास्थ्य सुविधाओं में मानव संसाधन की पर्याप्तता और सेवा उपलब्धता सहित स्वास्थ्य परिचर्चा प्रणाली को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी, जिसकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 100 MBBS विद्यार्थियों की है, को स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग NMC द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार स्थापित किया गया है। वर्तमान में कॉलेज MBBS शिक्षा के लिए NMC विनियमों के तहत अनिवार्य विभागों, अवसंरचना और सुविधाओं से सुसज्जित है। वर्तमान में कॉलेज में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी आदि जैसे सुपर स्पेशलिटी विभाग स्थापित नहीं किए गए हैं। कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी आदि जैसे रोगों से संबंधित गंभीर रोगियों का उपचार सामान्य चिकित्सा विभाग के संकाय द्वारा किया जा रहा है और जिन रोगियों को सुपर स्पेशलिस्ट परिचर्या की आवश्यकता होती है, उन्हें KGMU लखनऊ, SGPGI रेफर किया जा रहा है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में आज भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा और सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक सदन में पेश किया गया। हंगामे की वजह से आज भी उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल नहीं हो पाया। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। सभापति ने कहा कि 26 जुलाई को देश करगिल विजय दिवस मनाएगा। ये दिन 1999 के करगिल युद्ध में भारत की जीत की याद में और हमारे सशस्त्र सेनाओं के उन बहादुर अधिकारियों तथा सैनिकों के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने अद्भुत साहस, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट निष्ठा के साथ देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर ये सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। हम सशस्त्र सेनाओं के उन सभी सदस्यों के प्रति भी गहरा आभार व्यक्त करते हैं।

0: हैं जिनका दम्य साहस, दृढ़ संकल्प और असाधारण चुनौतियों के बीच निस्वार्थ समर्पण देश को प्रेरित करता रहता है और देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने के हमारे सामूहिक संकल्प को और मजबूत करता है। सभापति ने कहा कि मुझे विश्वास है कि इस सदन के सदस्य बहादुर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरे साथ शामिल होंगे। इसके बाद सदस्यों ने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले शूरवीर सैनिकों के सम्मान में कुछ पलों का मौन रखा। करगिल विजय दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 26 जुलाई को रविवार होने के कारण अवकाश होगा और संसद की बैठक नहीं होगी, इसलिए आज शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और प्रश्नकाल शुरू करना चाहा। इसी बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर सोमवार को राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में तथा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई का जिक्र किया। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सत्ता पक्ष के सदस्य विरोध करने लगे। सभापति ने हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी और उच्च सदन में आज भी शून्यकाल नहीं हो पाया। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने फिर से सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने के लिए आमंत्रित किया। श्री खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करते हुए बयान देना चाहिए। श्री खड़गे अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने भी हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। सदन में अव्यवस्था देख राधाकृष्णन ने बैठक दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ही नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर चर्चा करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उपसभापति हरिवंश ने विपक्षी सदस्यों को शांत कराने का प्रयास करते हुए कहा कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन अधिनियम विधेयक 2026 को पेश किया जाना है, जो आज के कामकाज की सूची में सूचीबद्ध है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। संशोधन विधेयक के विरोध में प्रस्ताव रखते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटस ने कहा कि संविधान में जो बात तय हो चुकी है, संसद उसे सामान्य अधिनियम के जरिए संशोधित नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये संशोधन विधेयक पूर्णतः देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की मंशा पर आधारित है, किंतु ये संविधान के उन संदर्भों की अनदेखी करता है जिनके आधार पर मूल कानून बनाया गया था। श्री ब्रिटस ने कहा कि संविधान सभा ने लगातार 3 वर्ष तक गहन विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को एक समान दर्जा नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि किसी कानून के जरिए देशभक्ति और राष्ट्रवाद पैदा नहीं किए जा सकते। विधेयक की मंशा समाज का ध्रुवीकरण करना है। विधेयक को पेश करने के विरोध में प्रस्ताव पेश करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संतोष कुमार पी ने कहा कि वंदे मातरम का उद्देश्य समाज को एकजुट करना है, बांटना नहीं है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से। मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज के अलावा मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज और FM चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी करगिल है। पेश खिदमत है प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

फौजी भाइयों के लिए अपना मनपसंद प्रोग्राम यानी फौजी भाइयों के लिए लेकर हम फिर हाजिर खिदमत हैं। प्रोग्राम सुनने वाले सभी सामीन को हमारी ओर से प्यार भरा आदाब।

अभी आप सुन रहे थे हम तुम्हारे हैं फिल्म का ये गीत उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में, बोल समीर की और तरस बनाई थी निखिल विनय ने। आइए सुनते हैं सड़क फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में, बोल समीर की और तरस बनाई है नदीम श्रवण ने।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की आवाज में, सड़क फिल्म का ये गाना है। आइए सुनते हैं दिल वाली फिल्म का ये नगमा, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में, बोल समीत की और तरस बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे फौजी भाइयों के लिए मीडियम वॉइस और FM चैनलों पर ये आकाशवाणी करगिल है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिले करेंगे।
1: परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में CJP के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन प्रभावित। चीन में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। और राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इसमें कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा।
4: अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम

0: कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। ये परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में एक अहम कदम है। साथ ही पेपर लीक के मामलों को लेकर विवादों में रही एजेंसी में किए जा रहे व्यापक बदलावों का हिस्सा भी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि मुलाकात सकारात्मक रही। उन्होंने कहा कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया।
2: लगभग दो घंटे चली सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ मंत्री जितेंद्र सिंह की बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई।
1: श्री नड्डा ने बताया कि कांग्रेस जनता पार्टी ने तीन मुख्य मांगे रखी और परीक्षाओं के पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कुछ सुधारों का सुझाव भी दिया। श्री नड्डा ने कहा कि सरकार कल प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की चर्चा करेगी। इस बीच प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी दो मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार पांचवें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मॉनसून सत्र के पहले सप्ताह में कोई भी महत्वपूर्ण विधायी कार्य नहीं हो सका। सरकार की ओर से बार बार यह आश्वासन दिए जाने के बावजूद कि वह नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज राज्यसभा में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा रखी गई कुछ शर्तों के कारण इस मुद्दे पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारियों और सरकार की ओर से व्यवस्था बनाए रखने की बार बार अपील के बावजूद विपक्षी सदस्य दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन करते रहे। लगातार हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के चारों महानगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंडकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा।
4: आंध्रा और कर्नाटक को जोड़ने वाले बहुत एक इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर में रेलवे की थर्ड और फोर्थ लाइन और दूसरा है केमिकल सेक्टर को एक टोटली नए तरीके से भारत में डेवलप करने के लिए एक नई स्कीम अप्रूव हुई है। और केमिकल भी सेमीकंडक्टर की तरह एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था इस इंडस्ट्री के लिए एक नए तरीके से सोचना।
1: ये परियोजना प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और संबंधित पक्षों के परामर्श के माध्यम से बहुमार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। श्री रवनीत रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बुखारेस्ट में रोमानिया के प्रधानमंत्री इलिये बोलोयान से मुलाकात कर भारत रोमानिया साझेदारी को आगे बढ़ाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार

0: निवेश, स्वच्छ ऊर्जा, संचार तथा उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श किया और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत की जानबूझकर पाकिस्तान में बाढ़ लाने की मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में चिनाब नदी में पानी का बहाव इस सप्ताह जम्मू और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण बढ़ा है। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिनका उनके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात करता रहा है, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में। विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि भारत आपसी हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से बांग्लादेश के साथ निरंतर संपर्क में है। आज लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री सिंह ने कहा कि भारत ने तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन और पुनःस्थापन परियोजना के संदर्भों तथा प्रस्तावित चीन म्यांमार बांग्लादेश आर्थिक गलियारे की रिपोर्टों पर ध्यान दिया है। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम शमन पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम शमन पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-28 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम शमन कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और मजबूत समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। बैठक की अध्यक्षता गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की। उन्होंने बेहतर सहयोग, नवाचार और सतत विकास के माध्यम से आपदा से निपटने की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की अपनी साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. कृष्णा वत्सा ने कहा कि ब्रिक्स सदस्य देशों ने एक साथ संयुक्त वक्तव्य, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए स्वैच्छिक सिद्धांत और प्रारंभिक चेतावनी डेटा एकीकरण के लिए दिशा निर्देशों को अपनाया है।
1: ब्रिक्स महत्वपूर्ण देशों का समूह है। हम मिलकर ही डिसाइड करते हैं कि किन सारे एरियाज को हम और उस पर ध्यान केंद्रित करें, कहां पर हम ज्यादा एक दूसरे से सहयोग कर सकते हैं। तो एक वर्क प्लान बनाने की बात थी और जो औपचारिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी हमने अडॉप्ट किया।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जारी हैं।
2: सभी बाढ़ प्रभावित जिलों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। नवसारी में आज NDRF, SDRF और भारतीय सेना की संयुक्त टीमों ने 14,000 से अधिक नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। उधर अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमली और घुमा जैसे जलभराव वाले क्षेत्रों का दौरा किया और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच भारी जलभराव के कारण आज भी रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल वर्षा की चेतावनी दी है और राज्य के 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में कल बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी कल मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिले लाहौल स्पीति में आज भीषण सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई। ये दुर्घटना उदयपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन मार्ग पर कदों

0: वर्णमाला राहुली के पास हुई जब पहाड़ी से अचानक एक विशाल चट्टान लुढ़क कर वाहन पर गिर गई। घटना के बाद पुलिस, जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों ने बचाव और राहत कार्य शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हमारी विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्मा आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम हॉकी खिलाड़ी सविता पुनिया से बात करेंगे, जिन्हें इस वर्ष प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चीन के हांगचाओ में आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारत की संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के आज दूसरे दिन पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा सुनिश्चित करने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधार को लेकर सरकार सख्त, पेपर लीक मामले में 47 अधिकारी बर्खास्त। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात को सकारात्मक बताया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज पेपर लीक सहित अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन भी बाधित हुई। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी लाइन को मंजूरी दी। और निशानेबाजी विश्व कप में भारत की संयम ने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9.

0: rupees and 56 paise against the US dollar. With Ayushi's report, Arjun Chowdhury for Akashvani News.
1: Global crude oil prices retreated today after surging earlier in the session. Brent crude was trading 3.1% down at $97.58 per barrel in intraday trade. On to sports. In shooting, India's Sanyam won the silver medal in the women's 10-meter air pistol event at the ISSF World Cup in Hangzhou, China, opening the country's medal account at the tournament. The 22-year-old shooter scored 243.4 in the final to secure a podium finish against a strong international field. And in the Commonwealth Games in Glasgow, India's Srihari Natraj has advanced to the men's 50-meter backstroke semi-finals on the second day. Natraj clocked 25.52 seconds in the heats to qualify 14th among the 16 semi-finalists. The semi-finals will be held tonight. The world-famous Bahuda Yatra of Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Devi Subhadra was celebrated with immense spiritual fervor in the holy city of Puri in Odisha today. Millions of devotees witnessed the sacred return journey of the sibling deities from the Sri Gundicha Temple to the Sri Jagannath Temple amid elaborate security arrangements. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves draft bill to set up fast-track courts and stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. National Testing Agency terminates 47 officials. Union Ministers J.P. Nadda and Dr. Jitendra Singh meet CJP delegation in New Delhi. Cabinet Committee on Economic Affairs approves new rail lines in Karnataka, Andhra Pradesh and new chemical park scheme to boost industrial growth. Heavy rains continue to lash several parts of Gujarat affecting normal life. And in ISSF Shooting World Cup, Sanyam wins silver medal in women's 10-meter air pistol event in China. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। मरकजी काबीना ने पेपर लीक और इम्तिहानात में धांधली के मामलों पर फास्ट ट्रैक अदालत तश्कील किए जाने और सख्त सजा तजवीज किए जाने के सिलसिले में एक बिल के मुसव्विदे को मंजूरी दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अहलकारों को बरतरफ कर दिया है। मरकजी वजरा जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में सीजेपी के वफद से मुलाकात की। इक्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी ने कर्नाटक आंध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनों की तामीर और केमिकल पार्क की नई स्कीम को मंजूरी दी है ताकि सनअती तरक्की को फरोग दिया जा सके। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई अपोजिशन की जानिब से शोरगुल के सबब रखना अंदाजी का शिकार रही। गुजरात के कई हिस्सों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मामूल की जिंदगी मुतासर हुई है और ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में सैनियम ने चीन में खवातीन के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने आज एक बिल के मुसव्विदे को मंजूरी दी है जिसके तहत पेपर लीक और इम्तिहानात में धांधली के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों की तश्कील और सख्त तरीन सजा को यकीनी बनाने की बात की गई है। काबीना की मीटिंग की सदारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने की। ये मीटिंग पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद हुई और बिल के मुसव्विदे को मंजूरी दी गई। जराए ने आकाशवाणी की खबरों के शोबे को बताया कि मुजव्वजा बिल अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किए जाने की उम्मीद है। कल एक वीडियो मैसेज के जरिए वजीर आजम मोदी ने एक बिल लाने के बारे में ऐलान किया था जिसमें पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई की शिकों को शामिल करने की बात की गई थी और जिसके बारे में वजीर आजम ने कहा था कि इसे पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इम्तिहानात में अहम इस्लाहात किए जाने के सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 47 अहलकारों को उनकी खिदमात से बरतरफ कर दिया है। जराए के मुताबिक इनमें से कुछ अहलकारों के खिलाफ कानूनी और फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। ये एनटीए की मुकम्मल सफाई का एक हिस्सा है जो पेपर लीक के मामलों में तनाजे का शिकार रही है। पार्लिमानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि इम्तिहानात में धांधलियों की रोकथाम के सिलसिले में सख्त बिल लाने में कोई ताखीर न की जाए। पार्लियामेंट के अहाते में नामानिगारों से बातचीत करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि मुल्क भी यही चाहता है और इस बिल की मंजूरी में

0: करण लगने से जख्मी हो गए, अल्लाह के फजल से वो ऑफ डेंजर है तीनों में। लोगों से भी अपील करना चाहूंगा क्योंकि बारिश होने से ना जो अर्थिंग वगैरह का इशू हो जाता है, बिजली का हमें एहतियात करने की जरूरत है। यह लोगों की शिकायत बहुत कम हो गए, तो ये अस्पताल अपना समझ के चाहे सफाई का अपना घर में जितना हम एहतियात करते हैं उससे ज्यादा मेरे ख्याल में अस्पताल में हमें काम करना चाहिए। और आज के नए अस्पताल में एक अच्छा सा पेशेंट लाज बनाया है जो 24/7 यहाँ पे चल रहा है। MRI है, बहुत बड़े अस्पतालों में 3 टेस्ट तक कम होते हैं। फिर आपके पास 164 का स्लाइस का आपके पास
1: खोंग एजियांग अची नुमाइंदा इनायत अली ना ग्रागन जिल्ला इंतजामियाज गुंदे जखमा निसी वक्सलाज दोखर फोखन मलसाउनियांग थुंगचून लामो

0: पास खत्म हो गया एग्रीकल्चर लैंड जो जिसमें फसल पूरा तैयार थे उसमें एग्रीकल्चर वालों को बोला वो तखमीना लगाए, हॉर्टिकल्चर वालों के तखमीना लगाए, फिर हमने रेवेन्यू वालों हमारे मकाने 8-10 जैसे सांगरा में 10-15 मकान आ गए, हमारे सिलमो में मकान जब में आ गए, यहाँ पे करकिचू में मकान जब में आ गए, एस्टिमेट करके जो भी इस पर नाम CRF के नाम के हिसाब से उनको जल्द ही मुआवजा वगैरह, जिनके घर पूरा चले गए उनके इमीडिएट उसमें हमने यूटेंसिल वगैरह गैस सिलेंडर वगैरह वो सब मुहैया किया है जहाँ पे जिनके मकान को ज्यादा नुकसान पहुंचा है, वे हर डिपार्टमेंट को हमने मोबिलाइज किया है, ये हमें रिपोर्ट देगा और हम जल्द उनको थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैकेनिकल के जितने भी हमारे यहाँ पे मशीनरी इक्विपमेंट है खासकर वो हर जगह हमने मोबिलाइज करके डिजास्टर में या अपने अनटाइड में से ये कर रहे हैं, बहुत जगहों पर नामुमकिन था जिसको हमने मुमकिन बनाया है। और लोगों से भी अपील है कि आपको लगता है कि एक जगह पर कहीं कुछ लेट हो जाते हैं तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं, कहीं कहीं देर लगता है, हमारी ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं प्रायोरिटाइज करके।
1: केरिडा करगिलिस ओसवाल पंप प्राइवेट लिमिटेड पे लखथुतिका सख्यत गेतखा नुनियांग सोलर पावर इरिगेशन प्लस के तामी मिंगना बरवा पीएम कुसुम स्कीम पे का हगुई प्रोग्राम चिगी ग्रलसिर बसे योतपिंदी वक्सला डिप्टी कमिश्नर करगिलिस प्रोग्राम प्यांग फेस्पा डोनफेज ओस्ते का दोना चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर करगिल अली रजा रिंचन डोनफेज ओस्ते का जुगसे योतपिन दिया बरियांग केरिडे प्रोजेक्ट डायरेक्टर काचो अहमद खान इस पीएम कुसुम स्कीम पे तोनीस कोरला हगुन तंगनचिक दोना प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अली नकस सोलर पंप पे फनख्यूनीस कोरला जरन दी चलागुन लगानोक जमोना न्यम्बो ख्योंचाना सब्सिडी रिन पुईस कोरला सल्पो बसे जरबा सोंग दी वक्सला दुजदां पुना ग्रागन डिप्टी कमिश्नर करगिली सख्यत गेतखान उनला दी सिकी मुनिकाना फनखे लेने एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर दोना इरिगेशन महकमा न्यानुक लखथुत स्टनपोर्स चोस जरे जर से खोंग सियांग तबकानी थोगेकादी पा मुनसक लेने रिन पो निंचेना न्यम्बो लगन ख्योंमी मिंगना दुनला युंग जरे जर दिया बरियांग एग्रीकल्चर महकमे खाखुरुन सख्यत गेत खानुनला पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम पेस कोरला जरन छुत्सिगी मलसाओ निका ड्रिप इरिगेशन पेस कोरला जरबा सोंग दी प्रोग्राम पो सख्यती फ्योक्स प्यांग नोक लखचेप चन छी मिंगना सोलर एनर्जी सोलूशन पो लगन ख्योंमी फिला कोल बीर दियांग पुना न्यम्बो थमा थोने इन लद्दाख रामारियुली यर्गेसी कौंसल करगिलुई गोबा डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखोनी जिले नालजोंस शरुती कनस दोखर फोखन मलसाउन फेस संसंग को सब डिविजनी गमियुलुनी जिक्सखोर बसे इंदी वक्सला खोंज मुतालिका महकमा गंगमा दिस दोखर उन ठीक बसे NDRF न SDRF पे नाल जोंस रुख सुन लेप चुपर गो सुख जरे खसको तंसे इन दी वक्सला मालियानु ख्योंस खान ग्रास प्यांग गबगी कना फेना त्रुग्या सकपा जिक्से इन जरेन चिंगन्यान ग्योस्पा दी युर्बाउन सक यांग चुक जरे जरसेत दिया बारियांग खोंगेजिल्ला इंतजामिया पुलिस SDRF रजाकारुन दोना महकमा नीस तोदरा बेन हिल कौंसली चोक्सनर रोक्सी फ्योक्सपोर तनपो स्ट्रीट अर्शद बसी इन कसायां खबर चीक अगेर इसी लद्दाख रामारियुली अर्गेसी कौंसल करगिली कौंसिलर रुनिस ला इलेक्शन अथॉरिटी करगिली चोक्सनाग्रल बस खन तकरीब चिगानो कौंसल सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस हाल ला एग्जीक्यूटिव कौंसिलर रुनी जोस्ते का नस कले इंदी वक्सला प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज करगिल शेख गोहर हुसैन इज अल्ताफ हुसैन न सईद अलिया नाउंस कले कौंसल एग्जीक्यूटिव स्ट्रोलिका चोसे इन दी वक्सला लद्दाख रामारियुली अर्गेसी कौंसल करगिल हुई गोबा डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखोन डिप्टी कमिश्नर करगिल राकेश कुमार डायरेक्टर उन जिले ऑफिसर उन लोकसो हल्का उन कौंसलर उन दोना ऑफिसर उन खुर उन सख जुक्से युतपिन लद्दाख पुलिस इसराइल पेग रोस्पी चलक नंबो जंसकारी करक्याक गोंगबू रिंगजुंग पुलिस चेक पोस्ट पेका जुने इंदी मिंगन पो लो निशुर साजबी पा आदिर यामिनी जोस्ते का तखना बसे प्राइवेट गाड़ी चिग्यानुक जंसकार न मनालिया बेसा बेन चिग योतखन इन मिंजरे जरसेत गाँव न जुमसे पुलिस स्टेशन जंसकार ला दी मिंगन पे लोकपार ला NDPS एक्ट पे दफर ग्यात निशु दोना निशुर सख्शिक पे नाल जोंस FIR तंसे इन दिया बरियांग जिले पुलिस जांचकारी चोक्सना मीमांग सुनला जिले अनुक दी जती चलागुन मेत पबे मिंगना गा जती लसंगन चिगिर तखना छना पुलिस ला छोरतों जरे जुआ बसे इन जिला पुलिस जांचकारी हफ्ता बरी मंडे